ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार हैं, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी

0: चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस।

श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रात से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। वे माता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु राम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदाई बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव चारों युगों तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं, किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, जिसमें स्वर था भूपेंद्र सिंह का, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।

ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा। अक्सर व्यक्ति को अंत में ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट देता है। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार। ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत

इस भक्ति रचना के साथ ही हमारा वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में ये पहला गीत हम सुन रहे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं फिल्म से, माफ कीजिएगा, बालिका वधू फिल्म से, जिसे गाया है अमित कुमार ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आर डी वर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हमराज फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था महेंद्र कपूर ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया था रवि ने।

हिमालय की गोद में फिल्म से सुन रहे थे आप ये खूबसूरत सा गीत जिसे गाया था मुकेश ने, लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है। कुछ घरों में अलार्म ने छुट्टी ले ली है, कुछ मम्मियों ने टिफिन बनाने की रोज की दौड़ से थोड़ी राहत पा ली है और कुछ बच्चों ने स्कूल बैग को कमरे के किसी कोने में रख दिया है। लेकिन दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ आराम करने का मौसम नहीं होता, ये वो मौसम होता है जब हम अपने वर्तमान से थोड़ा निकलकर अपने बचपन की गलियों में लौट जाते हैं, जब मायके की चौखट फिर से बुलाती है, जब नानी दादी की कहानियाँ फिर याद आती है और जब आम के पेड़ों की छांव और पुराने दोस्तों की हंसी फिर दिल में दस्तक देती है। आज का पूरा सफ़र उन्हीं यादों के नाम और उन नई यादों के नाम जिन्हें हम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं।

दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियाँ सिर्फ छुट्टियाँ नहीं होती, ये बचपन की गलियों में लौटने का मौसम होता है। कुछ बातें थोड़ा अपने बचपन से मिलिए, पुराने दोस्तों को फ़ोन कीजिए, माँ के साथ रसोई में बैठकर बातें कीजिए, पापा के साथ शाम की चाय पीजिए, और साथ ही अपनी नई पीढ़ी के लिए भी ऐसी यादें छोड़िए जिन्हें वे बड़े होकर मुस्कुराते हुए याद कर सके, जैसे आज हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियां और अपने बचपन के रंग। श्रोताओं, ये सच है, बचपन वापस नहीं आता, लेकिन उसकी खुशबू ज़रूर लौट आती है। इस गर्मी में कोशिश कीजिए कि मोबाइल की गैलरी से ज़्यादा दिल की गैलरी में तस्वीरें जमा हो। श्रोताओं, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि यादों का खजाना होता है। तो आइए, आज के इस सफ़र में हम यादों की उन्हीं खूबसूरत मोतियों को चुनेंगे और सजाएंगे कुछ प्यारे गीतों के साथ, क्योंकि ये मौसम है जी भर कर जीने का, मुस्कुराने का और अपनों के साथ कुछ अनमोल पल सजो लेने का।

दोस्तों, सुबह की इस खूबसूरत बेला में आपका हार्दिक स्वागत है आपने अपने कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि साल का यह मौसम ऐसा होता है जब घड़ी की सुइयां जैसे थोड़ी धीमी चलने लगती है, जब सुबह सुबह स्कूल बस पकड़ने की भागदौड़ नहीं होती, टिफिन यूनिफॉर्म और होमवर्क की भी चिंता थोड़ी कम हो जाती है और घर में एक अलग सी सुकून भरी मुस्कान तैरने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये मौसम है गर्मियों की छुट्टियों का। ये सिर्फ छुट्टियाँ नहीं होती, ये दरअसल समय का वो पुल होता है जो हमारे आज से उठाकर सीधे हमारे बचपन तक पहुँचा देता है। शायद इस समय किसी घर में मायके जाने की तैयारी चल रही होगी, किसी बच्चे ने अपने दादा दादी के घर जाने के दिन गिनने शुरू कर दिए होंगे और कोई माँ अपने पुराने एल्बम के पन्ने पलटते हुए मुस्कुरा रही होगी।

दोस्तों, ये महीना है छुट्टियों का और आज हम याद कर रहे हैं इन छुट्टियों के साथ जुड़ी हजारों यादों को।

आम के पेड़, मिट्टी की खुशबू, छत पर बिछी चारपाई और रात को तारों की गिनती और बिना किसी वजह के घंटों हंसते रहना। आज के इस पूरे सफ़र में हम उन्हीं यादों के दरवाजे खोलेंगे, कुछ पुरानी यादों को फिर से जिएंगे और साथ ही सोचेंगे कि हम अपनी नई पीढ़ी के लिए कैसी यादें छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बचपन दोबारा नहीं आता, लेकिन बचपन जैसी खुशियाँ ज़रूर दोबारा बनाई जा सकती है।

दोस्तों, छुट्टियां सिर्फ कैलेंडर में दर्ज कुछ दिनों का नाम नहीं, ये वो समय है जब हम रिश्तों को फिर से जीते हैं, यादों को संजोते हैं और जिंदगी की भागदौड़ के बीच कुछ पल अपने लिए चुरा लेते हैं। तो इस गर्मी थोड़ा घूमिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा बचपन फिर से जी लीजिए और अपने बच्चों को भी मोबाइल की स्क्रीन से बाहर की इस खूबसूरत दुनिया से मिलवाइए जहाँ यादें बनती है। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, पूरे साल हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते हैं कि साथ बैठकर बातें करने का समय ही नहीं मिल पाता। गर्मियों की छुट्टियां हमें ये मौका देती है कि हम परिवार के साथ कुछ अनमोल पल बिताएं, एक साथ खाना खाएं, पुरानी तस्वीरें देखें और उन किस्सों को फिर से सुने जो हर बार नए लगते हैं।

दोस्तों, बचपन हमें दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए वैसा बचपन जरूर बना सकते हैं। उन्हें समय दीजिए, घुमाइए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ खेलिए। यकीन मानिए, वो खिलौने नहीं याद रखेंगे, आपके साथ बिताए समय याद रखेंगे।

दोस्तों, आज बच्चे छुट्टियों में मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमें उन्हें बताना है कि असली खुशी बारिश में भीगने, पेड़ पर चढ़ने, पतंग उड़ाने और खुले मैदानों में दौड़ने से मिलती है। उसी में छुपी होती है बचपन की सच्ची खुशी। और दोस्तों, ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ज़िंदगी के इस पड़ाव पर जब आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ कम हो जाती है, तो क्यों न अपनी पुरानी हॉबी को फिर से जिंदा किया जाए, क्यों ना अपनी खोई हुई खुशियों को फिर से ढूंढा जाए, अपने पसंदीदा काम किए जाए, अपनी हंसी को फिर से चुना जाए और अपने लिए भी 4 दिन फिर से जिया जाए।

दोस्तों, गांव की गलियों में घूमते हुए हमें हमारे बचपन के दोस्त ज़रूर याद आते हैं। सालों बाद भी जब बचपन का दोस्त मिलता है तो बातचीत वहीं से शुरू होती है जहां छोड़ी थी। तो दोस्तों, इन छुट्टियों में एक काम ये भी कीजिए कि अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन कीजिए और बताइए कि उसकी यारी आपको कितनी प्यारी है।

दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी। स्कूल फिर खुल जाएंगे, काम फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस बार छुट्टियां सिर्फ कैलेंडर के कुछ दिन बनकर न रह जाए। ये आपके दिल में कुछ खूबसूरत यादें छोड़ जाए। पुराने पलों को फिर से जी लीजिए और नई पीढ़ी के लिए ऐसे पल बनाइए जिन्हें वे जीवन भर सहेज कर रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपकी रेडियो दोस्त जयश्री, और साथ में ये सजेशन देती हूँ कि गर्मियों की छुट्टियों में मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़िंदगी के छोटे छोटे पलों को बड़े प्यार से जीते।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक

0: लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया किस टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे

0: चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। इसलिए जो कुछ है आज में ही तो है। इसी विश्वास और आशा के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज जो है वो आज आपके हाथ में है और कल जो है उसके लिए हमें इंतजार करना होता है। इसलिए जो चीज हाथ में है उसका पूरा पूरा उपयोग हमें करना चाहिए। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत उपहार है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। और एक बहुत खास बात, क्योंकि मित्रों के बिना जिंदगी अधूरी है, मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं आती। इसलिए मित्रता कोई स्वार्थ नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। जी श्रोताओं, और एक जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि जो हमारी टीम है उसका परिचय हम आपसे करवा दें। तो बिल्कुल रेडी है आज की नमस्कार की टीम। श्रोताओं, चलिए चलते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ और आपको बताते हैं कि ट्रांसमीटर्स पर हमारे साथ हैं पारसपुरी गोस्वामी और चंद्राराम पटेल।
0: कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दे रहे हैं सुनील जयपाल।
1: और श्रोताओं, अनाउंसर ऑन ड्यूटी हैं जय श्री राठी और सोनिया देवड़ा।
0: नमस्कार कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं राजेश लामरोड। और प्रस्तुति है संजय व्यास की।
1: श्रोताओं, नमस्कार की पूरी टीम में जो दो नाम शामिल और हैं उन्हें मैं बता दूं। जी हाँ, मैं हूं नमस्कार में आपके साथ सीमा शर्मा और मेरे साथ
0: अर्चना चौहान।

अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार। आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से इस वक्त आप जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ। जानकारियों, गीतों, बातों से भरा प्रोग्राम जिसका रहता है आप सभी को हर सुबह इंतजार। और दोस्तों, कहा जाता है कि

0: जी
1: हाँ दोस्तों,
0: बिल्कुल अर्चना बताएं।
1: प्रोग्राम नमस्कार में आप सुन रहे हैं गाने नए नवेले, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने, और सीमा जी आपके लिए लेकर आती हैं बहुत प्यारी सी स्टोरी जिसका इंतजार हम सभी को रहता है।
0: तो बिल्कुल इंतजार करते हैं खत्म अर्चना, और तुम्हें बताते हैं कि देखो सेविंग करना किसे पसंद नहीं है, है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल।
0: हम सबका सेविंग अकाउंट होता ही होता है, और जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कोशिश ये होती है कि आज जो डिपॉजिट किया जाए उसमें कुछ इंटरेस्ट लग के कल अमाउंट जो है वो मेरा बढ़ जाए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक खास बैंक खाता भी होता है?
1: वो कौन सा?
0: वो कुछ ऐसा होता है कि इमेजिन करो ये एक बैंक खाता सबके पास होता है, वैसे पता नहीं होता है लोगों को जनरली, लेकिन सबके पास होता है।
1: ऐसा कौन सा खाता है जो हमें नहीं पता है?
0: इसमें हर सुबह 86,400 रुपये जमा होते हैं, ठीक है। इस खाते में एक जो खास बात होती है वो ये होती है कि जो बैलेंस होता है वो आगे नहीं जाता है, ठीक
1: अच्छा,
0: है। कोई बैलेंस अगले दिन के लिए नहीं जुड़ता।
1: मतलब एक दिन का जितना बैलेंस होता है वो उसी दिन खत्म हो जाता है।
0: हाँ, उसी दिन
1: बिल्कुल,
0: खत्म करना होता है, और वो
1: करना
0: भी
1: होता है।
0: कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, समझदारी से, नहीं तो फिर जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट मिलने वाला वो नहीं
1: वो
0: मिलेगा,
1: नहीं
0: बेकार हो
1: मिलेगा।
0: जाएगा। तो रोज सुबह आपके खाते में जुड़ जाते हैं 86,400 रुपये। इस खाते में कोई बैलेंस जो है अगले दिन के लिए नहीं जुड़ता है श्रोताओं, आप इसमें कोई नकद राशि
1: नहीं
0: नहीं रख
1: रख,
0: सकते हैं, और हर शाम उस राशि का वो हिस्सा बेकार हो जाता है जिसे आप दिन भर में इस्तेमाल नहीं कर पाए। मतलब अगर आपने 86,400 में से जो यूज नहीं किया वो आगे नहीं जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि हर दिन इतना अमाउंट मिलेगा, आपको कैसे यूज करना है ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो हर दिन एक एक रुपए निकाल लेंगे, क्या करेंगे ऐसा सोचिए सोचिए सोचिए, सब सोचिए, क्योंकि ये सभी के पास होता है। और श्रोताओं, इसका नाम जो है, ये जो बैंक है जिसमें 86,400 रुपए का जो एक इमेजिनेशन है हमें मिलता है, ये है समय। जी हाँ, हर सुबह ये आपको 86,400 सेकेंड जो है आपके बैंक अकाउंट में जमा करता है। बैंक अकाउंट यानी हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी का वो दिन। हर रात ये आपके द्वारा बुद्धिमानी से जो आपने काम नहीं किया है, समझ गए,
1: बिल्कुल
0: बुद्धिमानी से जो
1: जी।
0: नहीं किया है, यूज नहीं किया है, उस समय को खो देते हैं। हम कहते हैं ना समय नष्ट हो रहा है आपका। और हर दिन जो है, एक दिन से दूसरे दिन, हम ये नहीं कह सकते कल के मेरे इतने पल जो बचे हुए हैं वो मैं अगले दिन जी लूं,
1: अगले दिन जी
0: नहीं। जैसे कि हमने शुरुआत तुमने की थी अर्चना, कि जो आने वाला कल है उसमें नहीं, आज में हम जिए।
1: आज में जी
0: और जब
1: लूं।
0: हम आज में जीते हैं तो फिर जिंदगी बहुत सुहानी सी हो जाती है। और कहते हैं ना कि हर चीज का हम पूरा उपयोग करते हैं, इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं है, इसलिए आप अपने ऊपर से उधार नहीं ले सकते या अपने पास मौजूद समय से अधिक समय का उपयोग नहीं कर सकते। हर दिन खाता नए सिरे से शुरू होता है श्रोताओं। हर रात ये एक कहते हैं ना प्रयुक्त समय पर नष्ट भी हो जाता है, फिर नई गिनती शुरू हो जाती है। यदि आप दिन भर के जमा समय का उपयोग करने में विफल रहते हैं तो ये आपका नुकसान है, यानी कि सेविंग में से माइनस में आपका काम है जो चलने लगता है, और आप इसे वापस पाने के लिए अपील नहीं कर
1: नहीं कर
0: सकते।
1: सकते।
0: इसलिए समय की कद्र करें, जो समय आपको मिला है हर सुबह उसका पूरा पूरा उपयोग करें।

जी हाँ दोस्तों, ये ज़िंदगी के कुछ जो पल होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, लेकिन जैसा कि आपको इस कहानी में बताया गया कि हर दिन आपके अकाउंट में एक नया अमाउंट आता है और उसे आपको उसी दिन ख़त्म करना होता है। तो अगर आप जब अपने दिन की जो अंत करें तो किसी रिग्रेट के साथ ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में रिग्रेट के साथ आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। और जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें, आंखों में खुशी, लबों पर हंसी उसके साथ करें, क्योंकि गम कहीं नहीं हो, उसका नाम ना हो। और साथ ही साथ एक विश्वास आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए कि आज का दिन आपका कल से बेहतर गुजरे, और उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने चाहिए।

0: जी हाँ श्रोताओं, बात हमने की थी एक बैंक अकाउंट की जो हमें रोज कुछ ना कुछ देकर जाता है और उसे हमें यूज करना होता है, लेकिन एक सच वाला बैंक अकाउंट भी होता है अर्चना,
1: बिल्कुल जरूरी
0: जिसमें
1: होता है वो।
0: हम हमारी सेविंग्स जो हैं वो रखते हैं और वहाँ पे इंटरेस्ट भी लगता है। और कई बार हम देखते हैं कि बैंक नहीं जाने के चक्कर में हम लोग आजकल जो हमारे पास में पेमेंट मोड है ऑनलाइन, उस पे बहुत रिलाई कर लेते हैं। लेकिन श्रोताओं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट सेफ्टी टिप्स होती हैं कुछ,
1: बिल्कुल
0: जिनका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। और डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी ज़िंदगी को वैसे तो बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कहते ना कि जितना आसान बनाया उतनी ही छोटी सी लापरवाही अगर कर देंगे तो बड़ा भारी नुकसान भी
1: हो
0: हमें सहन
1: सकता
0: करना होगा,
1: है।
0: जिसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है और ना कोई करना चाहता है। तो श्रोताओं, आपको किस बात का विशेष ख्याल रखना है, कुछ ऐसी टिप्स हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, यूपीआई पिन कभी भी आप किसी के साथ शेयर नहीं करें। याद रखिए, बैंक या पेमेंट ऐप कभी भी आपसे यूपीआई पिन, ओटीपी या पासवर्ड नहीं मांगते। अगर कोई फोन करके मांगे तो समझ जाएं कि वो फ्रॉड हो सकता है।
1: साथ ही साथ एक और बात का ख्याल आपको हमेशा रखना चाहिए कि ओटीपी हमेशा गुप्त रखना चाहिए। ओटीपी आपके अकाउंट की सुरक्षा की चाबी है, इसलिए किसी को ना बताएं, चाहे सामने वाला खुद को बैंक का अधिकारी ही क्यों ना बताए। और जब आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं तो पेमेंट सेंड करने के अंदर में बहुत छोटा सा अंतर होता है। पैसे रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए कभी भी जब रिसीव करने का आपके पास मैसेज आए तो उसमें पिन ना डालें। और इन चीज़ों को आप अगर ध्यान रखते हैं और हड़बड़ी नहीं करते हैं तो यूपीआई इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं।
0: जी, और श्रोताओं, क्यूआर कोड जो है उसे भी सोच समझ कर स्कैन करें। कई बार हम जल्दी करते हैं और स्कैनर लेकर के फट से कर देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान

0: कि क्यूआर कोड स्कैन करके आमतौर पर जो पैसे भेजे जाते हैं, पैसे कई बार मिलते भी नहीं हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के भेजे क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले पूरी जांच कर लें। और अर्चना, तुम्हें एक और बात बताऊं कि सिर्फ आधिकारिक ऐप्स जो होती हैं उनका ही हमें उपयोग करना चाहिए, और पेमेंट ऐप्स को हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। अननोन लिंक्स या एपीके फाइल्स जो होती हैं उनसे ऐप्स इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। और एक बात बता दूं कि ये सब आजकल हम देखते हैं कि किसी को भी हम कॉल करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन पहले जो डायल करने के जस्ट बाद में ये इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, लेकिन फिर भी जो फ्रॉड केसेस हैं और जो कहते हैं ना शिकार हैं, दोनों ही नंबर जो है वो कुछ कम नहीं हो रहा है।
1: वही एक और बात है सीमा जी, कि जब भी हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आता है, आजकल हमारी आदत में हो गया है कि टेक्स्ट मैसेज हम नहीं देखते
0: राइट
1: हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन अलर्ट में आपको टेक्स्ट मैसेज हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो पब्लिक वाईफाई है उस पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, कोई कैफे है या पब्लिक हॉटस्पॉट्स हैं, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन बैंकिंग या ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर लेते हैं, जो कि सेफ नहीं होता है। और श्रोताओं, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मोबाइल पर पिन है, पासवर्ड है, फिंगरप्रिंट्स है या फेस लॉक है, ये जरूर रखें, स्पेशली इन एप्स के लिए।
1: बिल्कुल। और इन सब जानकारियों के साथ में आप यूपीआई को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं।
0: कहते हैं ना कि जानकारी ही बचाव है।

0: सीमा जी, कभी कभी किसी के होने भर से कितना प्रभाव पड़ता है
1: बिल्कुल
0: और किसी व्यक्तित्व का इतना प्रभाव होता है कि उसकी प्रेजेंस ही इंसान को बहुत खूबसूरत बनाती है या बहुत मन को बहुत अच्छा कर देती है।
1: बिल्कुल।
0: और ऐसा
1: और
0: क्यों होता है?
1: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है।
0: जी
1: जैसे अगर हम दो पर्संस की बात करें तो उनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि मैं शून्य हूँ, तुम शिखर हो, मैं बात हूँ, तुम असर हो, मैं आँख हूँ, तुम नज़र हो, तुम नेह का एक शजर हो। जब इस तरह की कुछ बात होती है तो बॉन्डिंग का तो कहना ही क्या। और श्रोताओं, आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो ये कह रही हैं कि यहां हमें रुकना पड़ेगा एक न्यूज ब्रेक के लिए।
2: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी, इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी, 4 जून तक हीट वेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
4: अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही है। इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत

0: आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे कैसे पहचाने और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3, झारखंड में 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट शामिल है। राजस्थान में 3 सदस्यों भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक 1 आरए सहित 20 अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया है। वहीं 332 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। साथ ही 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी कर भ्रष्टाचार के आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाया गया है। 17 कार्मिकों की पेंशन भी बंद की गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। आईआईटी रुड़की की ओर से जेईई एडवांस 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। इस साल 56,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में क्वालिफाई किया है। दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने जेईई एडवांस में पहला स्थान हासिल किया है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम बनाई है। बोर्ड ने कहा कि वह पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिससे हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वे राजस्थान और दिल्ली के जिलाध्यक्षों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि 10 दिन का ये चिंतन शिविर पुष्कर में आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। लगातार पिछले 2 दिनों से आंधी बारिश के दौर से तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी जगह अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। नागौर में तड़के 4 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। बारा और भीलवाड़ा में भी अल सुबह हल्की बारिश हुई। वहीं कल जैसलमेर में रेत का बवंडर उठा और दिन के समय ही अंधेरा छा गया। आसमान से दूर ही धूल का गुबार नजर आया। जिले के नाचना, सुल्ताना और मोहनगढ़ में बवंडर का काफी असर रहा। नाचना में ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और हनुमानगढ़ के संगरिया सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा 5.5 सेंटीमीटर बारिश कोटपुतली के शाहपुरा में दर्ज की गई। आंधी बारिश के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव से राहत बनी रहने के आसार हैं। प्रदेश में आए प्रचंड तूफान और बारिश के कारण जयपुर विद्युत वितरण निगम के तंत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। जयपुर और कोटा जोन में बड़ी संख्या में बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और फीडर प्रभावित हुए। इनमें से 387 गांव में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि इनमें से 366 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल की जा चुकी है। वहीं 21 गांव में सप्लाई सुचारू करने के लिए टीमें जुटी हुई हैं। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिन वैश्विक स्तर पर खाद्य और पोषण के स्रोत के रूप में दूध के महत्व को पहचान देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई।

है। ये डेयरी उत्पादन सतत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देती है। विश्व दूध दिवस के मौके पर देश में अनेक स्थानों पर डेयरी और कृषि संस्थानों में सम्मान समारोह और जागरूकता शिविर रखे गए। उधर प्रदेश में पाली जिले के सादड़ी में विश्व दूध दिवस के मौके पर ऊंटनी के दूध का निःशुल्क वितरण कर इसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। उन्होंने 1950 से 1970 के दशक में हिंदी, मराठी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में फिल्मी गीत गाए। उन्होंने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और मशहूर गायक मोहम्मद रफी के साथ भी सैकड़ों गीत गाए।

0: तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: प्रदेश में आज से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का यह अभियान 30 जून तक संचालित होगा। इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अभियान के तहत होटलों, ढाबों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार को आईपीएल 2026 का खिताब दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने, खेती की लागत कम करने तथा रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग के उद्देश्य से आज से खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इसमें प्रदेश की 3 सीटें शामिल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 4 जून तक हीटवेव से राहत के आसार। और विश्व दुग्ध दिवस आज, इस साल की थीम महिला किसानों का सम्मान रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, समाचारों के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और नमस्कार में आपके साथ मैं हूं सीमा शर्मा और मेरे साथ
3: अर्चना चौहान।

0: श्रोताओं, आज है 1 जून और 1 जून में बहुत सारे दिवस जो हैं वो दर्ज हैं। हम आपको बताएं कि 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार वैश्विक माता पिता दिवस की घोषणा की। तब से ये दिवस विश्व भर के माता पिताओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है हर वर्ष 1 जून को।
1: और इसी कड़ी में आज हम सुनेंगे भेंट वार्ता वैश्विक अभिभावक दिवस पर डॉक्टर प्रांशु सिंह, सहायक आचार्य मनोविज्ञान विभाग एम्स जोधपुर से संजय व्यास की बातचीत। प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का और बातचीत का विषय है माता पिता के प्रति सहयोग, आदर और आभार।
2: मित्रों, बहुत बहुत स्वागत। 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है और माता पिता और बच्चों का रिश्ता बहुत निस्वार्थ रिश्ता होता है। माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए करते हैं वो स्वार्थ से परे होता है और इस दिन को हम किस तरह से अपने पेरेंट्स को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम मना सकते हैं, यही ये दिन बात बताता है। क्योंकि कहा भी जाता है, हमारी मारवाड़ी में कहावत है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती, पिता कुपिता नहीं होते। तो माता पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में कई बार वो अपने संसाधनों से अधिक चले जाते हैं। इसके बावजूद उनकी यही प्रयास या कोशिश रहती है कि बच्चों को वो एक अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश दे पाएं, अच्छे नागरिक बना सकें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रांशु सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एम्स जोधपुर। डॉक्टर प्रांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
2: जब भी हम अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं, खास करके वो बच्चे जो बड़े भी हो गए हैं, काम में भी लग गए हैं और वो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, किस तरह की भावना आती है मन में?
3: माता पिता के लिए हमेशा सारा स्नेह होता है और एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो जैसे माता पिता ने हमारा ध्यान रखना है तो एक वो भावना भी उत्पन्न होती है कि हमें भी अब अपने माता पिता को वो चीज़ वापस देनी है जो उन्होंने

0: में दी है।
1: यद्यपि माता पिता ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बच्चा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन फिर भी बच्चों की तरफ से भी कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो माँ बाप ने उनको दिया है वो प्रतिदान के रूप में कुछ लौटाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने संसाधनों को उनको दे, बल्कि एक शुक्रिया, उनके साथ बिताए हुए पल, क्वालिटी टाइम, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। आज के जमाने में हम देखते हैं कि बच्चों के पास समय नहीं है, खास करके जो बच्चे पढ़ाई में लग गए हैं या किसी काम में लग गए हैं, उनके पास अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए समय नहीं होता है। तो ये दिक्कतें हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 जून को हम वैश्विक अभिभावक दिवस मनाते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है ये हमेशा बनी रहे। तो इस बार जो ये दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कोई विशेष थीम लेकर के आया है?
0: इस बार का थीम पेरेंट्स को लेके ही है।
1: इस बार 1 जून को हम ये जो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पेरेंट्स डे, इसकी क्या विशेष थीम है?
0: इस बार का जो थीम है वो है टुगेदर फॉर पेरेंट्स, और इसका मतलब यही है कि पूरा समाज और जितने समाज के लोग हैं वो पेरेंट्स की मदद कर पाएं, क्योंकि अक्सर आज के मॉडर्न जीवन में पेरेंट्स अपने आप को अकेला पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी नाना नानी का कई बार सहारा नहीं रहता है, और ऐसे इस कंडीशन में बच्चों को पालना, परिवार को आगे बढ़ाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। तो इस बार का थीम यही है कि हम पेरेंट्स की और कैसे मदद कर सकते हैं
1: बिल्कुल, बच्चों
0: परिवार।
1: का ये सोचना होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सुपर पेरेंट्स हैं, अपने पिता को वो सुपर डैड की तरह देखते हैं, मदर को सुपर मॉम की तरह देखते हैं, और उनके मन में ये होता है कि ये किसी भी परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। जब हम बड़े होते हैं तब हमें पता लगता है कि इस दुनियादारी में पेरेंट्स भी कई बार कमजोर पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की उनको आवश्यकता रहती है कई बार।
0: हाँ जी बिल्कुल, कई बार जैसे जब हम बड़े होते हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि हाँ हमारे माता पिता में भी कुछ कमियां थीं या वो कुछ चीज़ बेटर कर सकते थे, और हम रियलाइज करते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें उन्होंने जैसे शायद अपने माता पिता या अपने जिस समाज में वो बड़े हुए वहाँ से सीखी, और हो सकता है कि उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है या उनको फिर से चीज़ों को नई तरीके से समझने की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल, जो पेरेंटिंग है वो अपने आप में एक पूरी आर्ट है, साइंस है, और जो माता पिता अपने बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर के थोड़े से सजग रहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्या मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा पेरेंटिंग में मदद करता है?
0: जी बिल्कुल, पेरेंटिंग जैसा आपने कहा कि एक बहुत अच्छी आर्ट हो सकती है, हमारे जो मनोचिकित्सा या मनोविज्ञान की तरफ से देखें तो एक जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता से ही इमोशनल बॉन्डिंग बनाना सीखता है, और सोसाइटी में कैसे वर्क करना है वो माता पिता को देख के ही करता है। तो एक तरह से जो माता पिता को जिस तरह वो देखता है अपने सामने, बच्चा उसको एक मिरर की तरह उसका ब्रेन रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जिनको मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जो एक छोटा बच्चा होता है वो अपने समाज में, सोसाइटी में और स्पेशली माता पिता को जैसे देखता है वो वैसे ही उसका व्यवहार वैसे ही बन जाता है। तो एक बच्चा अपने माता पिता से सीखता है कि कैसे स्नेह करना है, कैसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, आगे जाके जो रिश्ते वो बनाएगा स्वस्थ तभी होंगे जब उसका अपने माता पिता से रिश्ता स्वस्थ होगा। तो ये सबसे जरूरी चीज होती है जो परिवार एक बच्चे को देता है, वो है कि कैसे हम समाज में रिश्ते बनाते हैं, कैसे हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये सबसे
1: जी,
0: इम्पोर्टेंट
1: डॉक्टर
0: है।
1: प्रांशु जी, जो भी सफल व्यक्ति होते हैं जीवन में वो एक बात जरूर कहते हैं कि परिवार का सपोर्ट बहुत रहा, तो हमारी सफलता के लिए हमारे पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब हम किसी एक मकाम पर पहुंच जाते हैं तो अक्सर हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते कि मुश्किल वक्त में या कमजोर समय में हमारे पेरेंट्स की क्या भूमिका रही। हम किस तरह से एक मकाम पर पहुंचने के बाद जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तब अपने पेरेंट्स को ये रियलाइज करवाएं कि आपका जो सपोर्ट पहले विगत में रहा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हम क्या तरीकों से, हम सीधे तो नहीं कह सकते कि आपने जो किया वही उसी वजह से आज मैं यहाँ हूं, लेकिन कुछ ऐसे इनडायरेक्ट तरीके हो सकते हैं जिनसे हम अपने पेरेंट्स को ये रियलाइज करवाएं कि आपकी वजह से ही मैं यहाँ हूं। तो ऐसे क्या छोटे छोटे जेस्चर्स हो सकते हैं?
0: कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है जैसे कि जब भी हमारी कोई सफलता हम कोई प्राप्त करते हैं तो उनको सबसे पहले या उनको उसी दिन हम बताएं, और उनको बताएं कि धन्यवाद करें उसी दिन, तो उनको महसूस होगा कि वो हमारी सफलता से जुड़े हुए हैं। दूसरा छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि जन्मदिन पे याद करना
1: जी,
0: या या एनिवर्सरी पे उनको याद करना, या जब गेस्ट आते हैं या रिश्तेदार होते हैं सामने, तो उनके सामने प्रेज करना अपने माता पिता के एफर्ट्स को। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो दर्शा सकती हैं
1: जी। और इन दिनों में अगर आपके पास समय है, वीकेंड पे आप

0: आप अगर कोई सीरीज देख रहे हैं तो आप उनके साथ बैठकर देख सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप
1: जी
0: अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी समय बिताएं और उनको रियलाइज करवाएं कि आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं अलग नहीं है, क्योंकि कंपार्टमेंटलाइज करना बहुत आसान होता है। घर में जाने के बाद आप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, पेरेंट्स कहीं और होते हैं, और डिनर आप साथ ले सकते हैं, ये जता सकते हैं कि ऑफिस के बाद में अब मेरा जो समय है वो केवल मेरे अपने बच्चों और पत्नी के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसी चीजें
1: बिल्कुल
0: हैं जो हम बता सकते हैं। जो दूर रहते हैं पेरेंट्स, उनको हम क्या कर सकते हैं, रोजाना फोन तो कर ही सकते हैं, बट उसके अलावा कुछ और चीजें भी की जा सकती हैं।
1: जो दूर रहते हैं पेरेंट्स, फोन करने के अलावा हम उनके लिए कुछ चीजें भिजवा सकते हैं जो हम अर्न कर रहे हैं, और कुछ जैसे छोटी छोटे गिफ्ट,
0: दे
1: ग्रीटिंग
0: सकते हैं।
1: कार्ड हो गए, केक हो गए बर्थडे पे, या अगर उन्हें कुछ मिठाई पसंद है तो वो हम भिजवा सकते हैं। आजकल ये सब काफी पॉसिबल है, इतने सारे शॉपिंग एप्स के जरिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि वीकेंड आता है या कोई हॉलीडे आता है, तो उनको जरूर हम इंक्लूड करें अपने लेजर टाइम में भी।
0: बिल्कुल डॉक्टर प्रांशु, एक चीज है कि ये बहुत बाजार को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है क्या? जैसे आपने बताया कि आप किसी साइट पे बुक करके बुके भिजवा सकते हैं या केक भिजवा सकते हैं, इसके अलावा भी हम कोई तरीका और निकाल सकते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा बाजार को या डिलीवरी जो साइट्स हैं, ऐप हैं, उनको इन्वॉल्व ना करें और जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही हम उनको जता सकते हैं?
1: हाँ, ये हमें डेफिनेटली बाजार को बहुत ज्यादा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है जैसे आपने बोला। तो अब जैसे कि घर में पूजा होती है, बीच बीच में त्योहार होते हैं, तो उनमें सबसे पहले माता पिता या बड़ों को हमारी संस्कृति में सम्मान दिया जाता है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, हो सकता है कि कोई कमर्शियल किसी जेस्चर से ज्यादा
0: इम्पॉर्टेंट
1: मायने
0: रहे।
1: रहे।
0: जी बिल्कुल, ये चीजें हैं जो आप अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड अपना दिखाने के लिए कर सकते हैं। और इन टर्न में जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं तो उनका क्या रोल रहता है उस वक्त में?
1: जी बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं घर के, अगर वो अपने दादा दादी, नाना नानी, बाकी बुजुर्ग लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो ज्यादा खुश रहते हैं। स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जो परिवार में बुजुर्गों के साथ या दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों के साथ बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और वृद्ध लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसके लिए नाना नानी, दादा दादी से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, कैसे बड़े लोगों का आदर कैसे करना है, समाज में बड़े लोगों के साथ कैसे रहना है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं समाज की बच्चों से। तो ये बच्चे ये सब चीजें सीखते हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं।
0: एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि हमारे यहाँ अब एल्डरली पेरेंट्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। जो हमारे यहाँ लॉन्जिविटी बढ़ गई है और जो एवरेज एज हमारी बढ़ी है उससे अब हमारे घर में बूढ़े माता पिता अधिक समय तक हमारे साथ रहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ में उनको कुछ दिक्कतें और बीमारियां भी होती है, जैसे भूलने की बीमारी होती है या फिर दवाइयां समय पर लेने की, तो इसमें हम किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं?
1: जो ये भूलने की बीमारी होती है जिसको डिमेंशिया कहते हैं, उसमें एक मदद हम ये कर सकते हैं कि कई बार जो हमारे माता पिता होते हैं उम्र की वजह से उनका घर में रोल कम हो जाता है। तो पहले जब मान लो कि वो अतिथि वगैरह के साथ बैठते हों, पर अब शायद वो कम बैठ रहे हों, तो हम उनका उम्र के साथ साथ उनके जो रोल चेंज हो रहा है परिवार में उसको हम एक्नॉलेज कर सकते हैं कि उनको जो भी हम डिसीजन लेते हैं फैमिली में उनको हमेशा इंक्लूड करने की कोशिश करें और हमेशा उनको इंकरेज करें कि वो लोगों से बातचीत करें, बाहर लोगों से मिलते रहें, क्योंकि इसका बहुत सोशलाइजेशन का बहुत असर पड़ता है। भूलने की दिक्कत है, ये प्रिवेंट करती है एक तरह से भूलना।
0: जी, मनोविज्ञान क्या कहता है कि एक जो यूनिट की तरह परिवार रहता है जिसमें आपके पेरेंट्स भी साथ रह रहे हों या न भी रह रहे हों लेकिन पेरेंट्स हमेशा जुड़ाव महसूस करते हों, वो परिवार ज्यादा सुखी और प्रसन्न परिवार होते हैं।
1: जी बिल्कुल, हम अक्सर हम मॉडर्न जीवन में जो हमारे रिश्ते हैं उनका इम्पोर्टेंस हम कम देते हैं, बट हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारे अंदर तनाव कितना है, वो डायरेक्टली उस पे निर्भर करता है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। तो अगर हमारे घर वालों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, चाहे वो बच्चों से हों या हमारे माता पिता से हों, तो हमारा और परिवार का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
0: जी डॉक्टर अंशु, इस प्रोग्राम में आप अगर कोई बात हमें बताना चाहते हैं मनोविज्ञान, एक मनोचिकित्सक होने के नाते, तो वो कौन सी होगी?
1: ये जैसे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, वो एक तरह से मरते मरते
0: मरणासन्न जो होते हैं, लगता है

0: कि हम बिल्कुल उस दरवाजे तक जाके आए
1: तो
0: हैं।
1: उन पे जो रिसर्च हुआ है, उन लोगों से जब बातचीत करते हैं तो वो इसी चीज पे एम्फसाइज करते हैं कि ये जो चीज पीछे नहीं छूटनी चाहिए हमारे जीवन में, वो है हमारे रिश्तों पे, जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी बिजी लाइफ में या सक्सेस पाने के पीछे. हम कई बार अपने रिलेशनशिप्स को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, हम अक्सर अपने परिवार के लोगों से ठीक से नहीं बर्ताव करते, चाहे

0: ठीक से नहीं बर्ताव करते, चाहे वो बच्चे हों या हमारे माता पिता हों। तो रिसर्च भी ये कहता है कि इस चीज पे हम ध्यान दें तो हम सुखी रह सकते हैं और सक्सेस भी ज्यादा पा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और रिश्तों की जो संपन्नता की संदूक होती है, उसमें केवल आपकी पत्नी और बच्चे जो हैं उनके साथ रिश्ते ही मायने नहीं रखते, बल्कि आपके अपने परिवार में पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और जो मैटरनल पेरेंट्स हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं वो भी उतने ही मायने रखते हैं। तभी एक अच्छा भरा पूरा परिवार हम कहला पाएंगे, और वो हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन ए वे वो आपको और ज़्यादा समृद्ध और एनरिच करता है।
0: बिल्कुल। और जितना परिवार में जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितने तरह तरह के लोगों से एक छोटा बच्चा मिलता है, उतना वो बच्चा सीखता है और समाज में केपेबल बनता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: तो इस वर्ल्ड पेरेंट्स डे पे आइए हम सब मिलकर के और अपने माता पिता का एक तरह से शुक्रिया अदा करें, उनका आभार प्रदर्शित करें, और आभार प्रदर्शित सीधे जाकर के उनको ये न कहें कि आपका बहुत बहुत आभार, बल्कि और बहुत सारे सटल तरीके जो हो सकते हैं, आप पांव छूना तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है ही, उसके अलावा उनकी पसंद की कोई डिश बना सकते हैं या फिर उनकी पसंद की कोई किताब उनको गिफ्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम ये जता सकते हैं कि आप अभी भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, हमेशा बने रहेंगे महत्वपूर्ण, ये अगर हम जता सकें तो वर्ल्ड पेरेंट्स डे को सेलिब्रेट करने की हमारी जो मंशा है वो सफल हो पाएगी।
0: जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल डॉक्टर प्रांशु सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार।
0: थैंक
1: असिस्टेंट प्रोफेसर साइकियाट्री डिपार्टमेंट एम्स जोधपुर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने के लिए।
0: यू सो मच।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वैश्विक अभिभावक दिवस पर डॉक्टर प्रांशु सिंह, सहायक आचार्य, मनोचिकित्सा विभाग एम्स जोधपुर से माता पिता के प्रति सहयोग, आदर और आभार विषय पर संजय व्यास की बातचीत। प्रस्तुति एवं संयोजन राजेश लामरोड का था।

आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगली पेशकश है आपके लिए 1942 अ लव स्टोरी से कुमार सानू की आवाज़ में, बोल हैं जनरल और संगीत है आर डी बर्मन का।

आइए श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म साजन से। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का।

फिल्म बाजीगर से सुन रहे हैं आप ये गीत। अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजों में गौहर कानपुरी की बोल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और फिल्म संगीत में अगली पेशकश है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत, जिसमें बोल हैं रानी मलिक के और संगीत है अनु मलिक का। आइए मिलकर सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आशिकी से कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत, जिसमें बोल थे समीर के और संगीत था गुलशन कुमार का। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अरमान से, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आवारा पागल दीवाना फिल्म से ये गीत। आवाज़ें थीं शान, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, अलका याग्निक, उदित नारायण, बस साथियों की, बोल थे समीर के और संगीत था अनु मलिक का। आइए फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश आपके लिए, फिल्म बड़ा दिन से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है जतिन ललित का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मुकेश चौधरी और माही राज की आवाज़ों में ये लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं अनुराधा की आवाज में ये लोक रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: आना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, शंकरलाल दामानी की आवाज़ में इसी लोक रचना के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम पहली गज़ल आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए चित्रा सिंह की आवाज में सुनते हैं अगली गजल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की आखिरी गजल सुनते हैं जगजीत सिंह की और आशा भोसले की आवाजों में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 1 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्तियां की है। विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई। म्यांमा के राष्ट्रपति शनिवार को 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उनका व्यापार और उद्योग जगत के साथ बातचीत के लिए कल मुंबई जाने का कार्यक्रम है। देश में आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इनकी कीमतें 4 प्रमुख शहरों में 42 रूपये से लेकर 53.5 रूपये तक बढ़ गई है। 19 किलोग्राम वाले ये सिलेंडर होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों में उपयोग लिए जाते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के दाम अब 3,113.50 रूपये होंगे। व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अमेरिका और ईरान में संघर्ष के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा लागत में वृद्धि के मद्देनजर हुई है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जा रही है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। जून महीने को राष्ट्रीय एंटी मलेरिया माह के रूप में मनाया जाएगा। मॉनसून पूर्व मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान पूरे महीने मच्छरों की रोकथाम और जन जागरूकता के विशेष कार्यक्रम होंगे। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर सोर्स रिडक्शन कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एंटी लार्वा उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में साफ पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियानों से अब तक 15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से चलाए गए 6 विशेष अभियानों से लोगों को काफी राहत मिली है। इसके तहत 3,000 से ज्यादा हैंडपंपों की मरम्मत और 1,600 से अधिक पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। इसमें विशेष टीमों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों, पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर समस्याओं का

0: त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। साथ ही विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 325 अवैध जल कनेक्शन हटाए। भरतपुर में आज दुपहिया वाहन चालकों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। यातायात पुलिस ने भामाशाहों के सहयोग से ये वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों को हेलमेट की उपयोगिता बताई गई, साथ ही यातायात नियमों की पालना करने की सीख दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणे सरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया इन दिना आप खेती बाड़ी का काम काज करा हा और कई दान देखो के आप अठीने मंडी दिखने भी जावा हा। भात भातरी जी की सब्जियां है वे अपने मंडी में आवे है और आप भी देखो घर में परोटने वास्ते लेना आवा हा, लौकी लावा हा, तोरई लावा हा और साथ साथ गंवार फली है, काचरो है। कई दान आप सब्जी घर में बनावा, काचरो और गंवार फली जी की सब्जी है वे आप बनावा और साथ आप जीमा तो बहुत ही बढ़िया लगे। और हमें दोपहरी रो भगत है किसान भाई भी आपने बढ़िया काचरी और गंवार फली री सब्जी साथ सोगरो साथ राबड़ी दही कांदो बीजो जिमे आपने तो गर्मियार महीने जी की लू चाले इनसो जी को बचाव है वो भी अपने हो जाए करे। हमें बात आया कि भाई काचरिया जी का है अपने खेतर महीने लियोड़ा है किन तरह सो किसान भाई लोगो लग आपरे सिंचाई करे है साथे निरई गुड़ई है ये भी करे है और टाइमो टाइम मान लो फल पाक जा उन वगत आपरे तोड़े और पचे हुए जी का फल मंडी में आवे और पचे अपने जी का भाई सेण है काचरे री सब्जियां बनाना आपरे जिम्मे। काचरे में देखो उत्पादन किसान भाई लेवे तो भात भातरा जी का रोग है कीट है लाग जाए करे। काचरी महीने जी का कीट और जी का रोग लागे उन्हारो जी को प्रबंधन है वो आप किन तरह से कर सका। काचरी महीने बरुथी जी को कीट है जिन्हें आप माइट्स किया करा वो भी लाग जाए करे। इंडे नियंत्रण वास्ते इथियोन 50 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर इधर सु घोल बना परा और फसल माते छिड़काव करना चाहिए। काचरी फसल महीने चेपो है हरो तेलो है मोइलो है वो भी लाग जाए करे। इन कीटों रे नियंत्रण वास्ते मेलाथियान 1 मिलीलीटर या डाई मिथोएट 30 ईसी 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना परा और एक नियमित अंतराल माथे किसान भाई ने छिड़काव करना चाहिए। इंद्रे हाथे हाथे काचरे महीने भले भी रोग बीजा लागिया करे। इंद्रे आपने जानकारी दिरा पहला सुनावा आपने बढ़िया सी गीत रचना।

आप बात कर रहे हैं कि भाई काचरे महीने भात भात रा कीट है रोग लाग जाए करे इनारो नियंत्रण और प्रबंधन आप किन तरह से कर सका तो हमें वो बात आवे कि भाई काचरे महीने छाछिया रोग भी लाग जाए करे इन रोग रे नियंत्रण वास्ते किसान भाई ने कई करना चाहिए कि जिको अपनो खेत है उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए। रोग ग्रस्त जिका भाग है पौधारा उन्हें आप एकत्रित करा और उन्हें जला दा। साथ डाइनो केप 1 मिलीलीटर दवा रो प्रति लीटर पानी में गोल बना परा और 15 दिनारे अंतराल माते 2 दाणु लेर 3 दाण छिड़काव किसान भाई ने करना चाहिए। काचरा की फसल महीने मृदु रोमिल जिनापा तुला सीता रोग किया करा इन महीने भी लाग जाए करे जिकी बेलड़िया है काचरा री उन्होंने रोग लाग गया करे तो सगली जिकी बेलड़िया है जिन जिन्हें रोग लागड़ो है उन्हें अपने भेड़ी करनी चाहिए और जला देनी चाहिए और साथ मैनकोजेब या रिडोमिल MZ रो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रो जिको घोल है वो फसल माते 15 दिनारे अंतराले माते 2 दाणु लेर 3 दाण छिड़काव किसान भाई ने करना चाहिए। किसान भाई काचरा महीने एक श्याम वर्पा रोग भी लाग जाए करे इन रोग नियंत्रण वास्ते बीज बोणो पहले जापाने कई करना चाहिए एग्रीसीन GN या टेबुकोनोजोल 2 DS 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज दरसों उपचारित अपने करनीज बीज काम में लेना चाहिए। हमें बात आवे कि भाई कई दान खड़ी फसल है इन महीने भी ओजी को रोग है वो लाग जा रोग रा अपने लक्षण दिखे उन वक्त 3 ग्राम या 2 ग्राम मैन को जी प्रति लीटर पानी में गोल बनावा और 10 दिनारे छेती माते 2-3 दाण अपा छिड़काव अपा करना और एक बात रो अपने ध्यान रखना किसान भाई की जिका रोगग्रस्त भाग है फसल रा वने अपा भेड़ा करा और उन्हें जला दा और उचित फसल चक्र अपा अपनावा तो इन रोग रिज की संभावना है आ काचरे री फसल महीने कम रिया करे। कई दान काचरे महीने विषाणु रोग भी लागिया करे इन दुष्प्रभाव ने रोकने वास्ते जिका रोगग्रस्त जिका पौधा है वहां अपने पाड़ लेना चाहिए और जला देना चाहिए या खेत एकांत महीने उना खुणार महीने अपने खाडो खोदन दबा देना चाहिए। इन विषाणु रोग रे नियंत्रण वास्ते किसान भाई कई कर सके एमिडा क्लोप्रिड 17.8 SL 0.3 मिलीलीटर या डाई मिथोएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में गोल परो और 10-15 दिन छेती माते 3-4 दाण छिड़काव आप किसान भाई करे तो औजी को विषाणु रोग है इन रोग खात्म हो जाए करे। किसान भाई आ ही जानकारी के भाई आप काचरी री फसल महीने कीट और रोग रोजी को प्रबंधन है वो आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो बगत पूरा वेरियो है दिनेश राणेजा ने सीख दिराओ राम राम।

अभी कृषक भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर सूर्यनगरी चैनल एवं एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सन सिटी चैनल। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम गणगौर।

0: तो पूनम जी तावड़ो चाहे कितो भी पढ़ो, लेकिन अपने जी सखियाँ जी की है नी वो काम करना नहीं छोड़े। और अबार तो पूनम जी देखो 3-4 दिन आंधी जी की है, वह इतनी
1: बहुत
0: तेज
1: ज्यादा
0: आ रही
1: है।
0: है कि अपने सखियाँ हैं जी की दिन रात मतलब काम में लागोड़ी है।
1: अरे काम में कहीं लगा टीन तो पानी को नहीं आवे, और
0: हाँ
1: पानी नहीं जावे जब साफ सफाई विकी कर करा अटिन आंधी हूँ घर भरी जावे पूरा, तो पानी की भी जरूरत रहे उनमें से।
0: बिल्कुल। और देखो और जो कुछ समय ने वो आपा नो सिखावे कि पानी जिको आपा खर्च कराने बिना सोच समझ करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अपने सखियाँ बहुत तेज पानी है जिको के मैंने टूंटिया चला चला काम करे करो, और अब बार जी थोड़ा पानी कम आ रही तो आप देखो वो धीमे धीमे मतलब टूंटी चला पर काम कर रही है। तो आई अगर आदत आप शुरू शुरू रखा
1: तो आप
0: रोज
1: पानी की
0: जीवन
1: बचत कर
0: तो
1: सक।
0: पानी की बचत कर सका, आपने जी की है पानी की समस्या भी नहीं हो।
1: बिल्कुल
0: पर कहे नहीं कि आदमी जब सुख ज्यादा मिल जावे नहीं तो दुख है जिसको भूल
1: भूल जाया करे। बिल्कुल वो अब इन शुक्र
0: जाए
1: महीने इतना मशगूल हो जाया करे कि
0: तो
1: बिन पता ही नहीं चले कि कभी देखो शुक्र बाद
0: हाँ
1: दुख भी आया करे,
0: बिल्कुल।
1: और जीवन चक्र है जिसको चलता
0: हाँ
1: रहा करे।
0: और देखो ये जीवन चक्र जब है बात करी और सुख दुख की बात करी तो इन वास्ते देखो घर का काम तो आप कर रही हैं और पानी री लाइट री इनसे बचत रही सागे सागे रुपये री बचत करना भी पूनम जी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज री आज जरूरत है। और आज री जरूरत है माए अगर आप पति पत्नी दोनों कमावे या परिवार 4 सदस्य अगर बेचारों अगर आप योग्यता अनुसार रुपये कमाने रो सोचे तो मतलब कहें कि एक परिवार है जो मजबूत बने। अपने
1: बिल्कुल
0: आर्थिक समस्याएं अपने कम हुए और खासकर अपने जो कि सखियाँ ने ब्याह तो देखो पूनम जी बहुत कहें नहीं बुद्धिमान है कि रोजमर्रा रे जीवन में जो को वह हिसाब किताब करे नहीं तो बड़े सोच समझ करे और एक हिसाब बनावे बजट बनावे कि भी कितो खर्चो कटे और बीप में हूँ आपने थोड़ी बचत करे। और
1: बिल्कुल
0: अगर कोई अपनी सखी पगा माते खड़ी हो परी कोई काम करे और पैसों बचावे तो वह और ही केवल 4 चांद लगा देवे।
1: बिल्कुल सही की आराधना जी। और आज रो युग तो बदलाव रो युग है, शिक्षा महिलाओं ने ना केवल वैज्ञानिक रूप सु और वैचारिक रूप सु मजबूत करियो है, बल्कि उनके भीतर एक आत्मविश्वास और नुवो संचार भी करियो है। अक्सर अपने समाज में ना सोच आवी रहा करे कि शिक्षा रो अंतिम लक्ष्य केवल एक सुरक्षित नौकरी है या पची कॉर्पोरेट नौकरी पाणो ही जाए, पर देखो एडो जरूरी नहीं है कि आप पढ़िया बाद में नौकरी ही करो। अगर आप में कोई हुनर है तो आप घर भी संभाल सको और घरे बैठिया भी काम कर सको, या कोई छोटो मोटो स्तर मत भी आप काम कर सको हो।
0: बिल्कुल। और देखो जो आप बोले ना कि छोटो मोटो काम और
1: हाँ
0: काम कदे भी अपने आप में छोटो नहीं हुआ करे। आपा शब्द जी को कहवा कि छोटो है काम जितने हम आपा करें ना पूनम जी तो वो काम बहुत बिम्मित ताकत हुआ। अगर आप सिर्फ कहना कि बर्तन मांजना वो छोटो काम है पर जितने हम बर्तन मांजा नहीं विंडम आपा ने बताया कि अपने हाथ री रेखा है जी की घसी जाए पानी की समस्या है बिरो सामना करना पड़े तावड़ो भी हुए रात रहा भी आप ये सोचा कि नहीं बर्तन है जगह साफ कर रखा तो वो
1: बिल्कुल
0: काम छोटो को नहीं झाड़ू लगाना हो चाहे बर्तन हो चाहे पोछा हो चाहे कपड़ा इस्त्री करना हो या आप मेरे अलावा घरों कोई बिजनेस शुरू करना चाहो अगर आप पापड़ बना रहे हो बड़ी बना रहे हो अचार बना ऐसा सगला काम जो का है अपने आप में एक हुनर है। क्योंकि पाक कला भी पूनम जी मतलब कहीं आसान नहीं है। पाक कला के अंदर बहुत सारी मतलब नाप तोल रखा तो वह चीज़ जी के स्वादिष्ट बने।
1: क्योंकि लोग स्वाद चाहे जद आ घर जड़ी स्वाद जड़ी बनेला जद ही लोग भी ने पसंद करेला, तो
0: बिल्कुल।
1: इंद्र महीने एक हुनर होना बहुत जरूरी है।
0: और हुनर की बात कर तो इमें अपने सखियां जी की है मतलब कि मैंने माहिर है पाना ध्यान है कि एक कप चाय जब बनावा तो भी मैं कितनी चीनी डालनी है कितनी चाय पत्ती डालनी है कितना दूध डालना है और वो हुनर जो को है सखिया ने कई बार आत्मनिर्भर बनाने वास्ते भी आगे प्रेरित करे करे।

0: आकाशवाणी जोधपुर सु गणगौर बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनन री। और आपने जी डिग्रियां हैं जी सिर्फ नौकरी वास्ते ही नहीं होया करे, बे आपने शिक्षा है आपने डिग्रियां बहुत कुछ नयो करण वास्ते भी एक ताकत दिया करे। आप अगर सोचा कि आपने डिग्रियां जी की है बे केवल कोई बड़ी कंपनी में या कोई सरकारी ऑफिस में ही काम आवेला, ऐसा नहीं है। आपकी डिग्रियां आप एक हुनर है, आप एक आभूषण है, आ एक अपनी ताकत है कि ई ताकत ने आप कदे भी कठे भी कोई भी जगह पर आप जब मर्जी हुए आप हीरो काम ले सको। तो आज की डिग्री है इन्हें एक कोई आप व्यवसाय जद करो तब भी आपने ये जरूरत पड़े, क्योंकि आप जब व्यवसाय करो ना तो आपने बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़े। जी हाँ, बैंक रो खातों हो गयो, आपने कंप्यूटर रो ज्ञान है, आपने मार्केटिंग करने की जी की चीज की जरूरत पड़े, तो इन वास्ते आप डिग्रियां जी के वे आप सहयोग करें। और अगर कोई अगर व्यवसाय आप करा और विण समय अगर खान पान से जुड़ोड़ो कोई व्यवसाय हुए और वो भी फिर पानीपुरी जी हाँ स्वाद चटपट रहो, ओहो तो कहनी ही कहीं बात है, मुंह में ही कहे नहीं पानी घुल गया। और सखियारे भी देखो मुंह में पानी जिको लाग रही है घुल रही है। तो जब खट्टे मीठे और चटपटे स्वाद पानीपुरी री बात करा तो ये पानीपुरी री दुनिया रे माए भी एक व्यवसाय है जिको शुरू कर सके है। और आज जी की अपने सगे स्टूडियो में एक बहुत ही सुंदर जोड़ी है, दो बहनियारी जिके में एक रजनी सांकला है और ऐश्वर्या सांकला जिका एक लंबे समय से अपने खूबसूरत जोड़ी ने पानी पुणी रे व्यवसाय में जो नाम है जिको कर चुका है। तो अपने स्टूडियो माए पधार चुके हैं। तो आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो माए रजनी जी और ऐश्वर्या जी आप घने मानसु स्वागत।
1: धन्यवाद मैम।
0: तो रजनी जी आज आपने क्या लाग रहे आकाशवाणी स्टूडियो में आप रहा?
1: आप माने अट बुलाया इन बात ही बहुत खुशी है माने।
0: तो ऐश्वर्या जी आप अनुभव बताओ केड़ो लाग रहे आपने?
1: आज पहली बार ऐसा मतलब इंटरव्यू हुआ है हमारा, 3 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो थोड़ा नर्वसनेस हो रही है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है।
0: आप अभी आप युवा पीढ़ी में हो और आप बहुत अच्छी बात है कि एक छोटी सी उम्र में ही आप व्यवसाय जो है शुरू करने सोच लियो।

0: तो सबसे पहला मैं लोगों को जानना चाहवाला कि आप रो शिक्षा, आप रो बचपन, आप रो जितना शुरुआत है वह किन प्रकार हुई।
1: मैं एक छोटी मतलब कि बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली हूँ बिलोंग करा और मारा पापा मजदूरी करे वे कम टारो काम करता शुरू और मैं पांच बहना और एक भाई है मानो। तो मतलब कि एक कोई होयो तो मन सा इंसिडेंट कि पापा मैं छोटा नहीं जद पापा आँख में वो टक्की रो कोई लोर गियो परो जन व्यण आँख री पूरी रोशनी गई परी तो ही भाई हिम्मत नहीं मारी मान हैंगा ने नहीं पढ़ाया और मोटा करिया और आज आप देख रिया हो मैं इन प्लेटफॉर्म में था आप सब बरामी। और आज 2 साल पहले पापा दूसरी आँख रो भी पर्दो फाटो जन पच्चे डॉक्टर के यो खनी अब नहीं कर सके काम जद पच्चे मो हिम्मत नहीं हारी।
0: बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है और जिस तरह से आप भावुक हो रहे हो आप बिल्कुल भावुक मत हो क्योंकि देखो आपकी जो शक्ति है आपकी माँ आपके सागे है आपका परिवार सागे है और आपकी बहन सागे है।
2: पंग तो हर कहीं हुआ करे पर उड़ान जदे ही मिले जन हौसला बुलंद हुआ करे और हवा बढ़ने अपन साथ दिया करे हौसला। तो ऐश्वर्य जी आप बताओ कि अक्सर अपने समाज में मानी जावे कि डिग्री के बाद नौकरी करनी चाहिए जब आपने पानीपुरी रो काम आप शुरू करियो तो परिवार और मित्र जी की प्रतिक्रिया है वह कहीं भी
1: मतलब कि ऐडा हालात में गुजर रिया था कि माने कोई मना नहीं करियो काम वास्ते और मतलब उन टाइम एक बार एक पल ऐडा आयो मौसम अलग हो गया और मैं माने सिर्फ काम माते ही ध्यान दियो और किन्नी लोगों की बातों माते कटे ही ध्यान नहीं दियो।
0: बिल्कुल एकदम सही बात है कि अगर आप रो हौसलो बुलंद है आपने कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो लोगारी परवाह कदी भी नहीं करनी। अगर आप रो रास्ता सही है और आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपने घबराने की भी कोई जरूरत को नहीं क्योंकि हुए कहीं कि जब कोई व्यक्ति थोड़ो सो अनोखो काम करे थोड़ो लीकू हट कर करे तो वो समाज के नजर में बहुत ज्यादा आया करे और समाज भी बहुत बार यहाँ हुए कि समाज भी चीज की आलोचना करे पर भी आलोचना से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और आज आप दोनों की जोड़ी है जिसके आज माने मतलब एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हाँ आपने भी कई तरह राज्य आप बता रहे हो कि समाज जी का है बहुत कुछ किया होगा जहाँ ऐश्वर्य जी अब आप बतायो कि थोड़ा सा मतलब मुश्किल हुई तो किन प्रकार की मुश्किल हुई।
1: तो फ्रेंड्स वगैरह आने में थोड़ा सोचते हैं कि क्या बात करेंगे आगे पढ़ाई शुरू की है नहीं की है रुक गई है क्या अभी क्या कर रहे हो आगे वो सब। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि जब हमने स्टार्ट मजबूरी में भले किया हो लेकिन अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ कुछ बड़ा हासिल किया है हमने।
0: बिल्कुल
2: तो बिल्कुल ऐश्वर्य जी जरूर बड़ा हासिल करियो हो आप और आज आपकी पहचान बन रही है आपके नाम सु के बीए पानी पूरी वाली। तो पूरी आप सुजीरी ग्राहक ने ज्यादा अच्छी लगे या आटा ने ज्यादा अच्छी लगे।
1: हम आटे की रखते हैं पूरी तो हमारे हिसाब से जो मतलब रेगुलर फ्लेवर हम रखते हैं इस हिसाब से रेगुलर ही अच्छा लगता है लोगों को।
0: अच्छा बिल्कुल जी हाँ एक बहुत अच्छी बात आपने पूछना चाहवा की बहुत देर में लोग सोच रहे हैं टॉल है मेरा नाम बड़ो ही अनोखा है बीए पानी पूरी वाली तो जो वो नाम है वो क्या शुरू हुआ।
1: बीए पानीपुरी वाली मतलब कि ये पहले किसी ने ऐसा नाम सोचा नहीं है और हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने बीए तक की पढ़ाई की हुई है तो और उस टाइम ट्रेंड में भी यही था कि वहाँ सब लोग बीटेक पानीपुरी वाली भी वायरल थी। अच्छा। तो हमने उस हिसाब से सोचा कि हम भी ऐसा कुछ नाम सोचते जो सबसे हटकर हो और हमने किसी का कॉपी नहीं किया है हमारी ये ग्रेजुएशन हो रखी थी तो हमने सोचा हम भी बीए रख देते हैं जो सबसे अलग रहेगा पानीपुरी में और अपने राजस्थान में तो और किसी का भी इस नाम से लड़कियों का होगा नहीं स्टॉल।
0: बहुत अच्छी बात है
2: तो आप पानीपुरी और कौन कौन सा चटपटा स्वाद है जिसको ग्राहक ने चखाया करो।
1: पानीपुरी में होममेड बनावा और घरे होममेड में छोला टिक्की चाट भी बनावा बहुत भी वह भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करे छोले टिक्की चाट भी और माने स्टॉल माते और उन पूरा स्टॉक खत्म हो जावे शाम तक।
2: अच्छा अच्छी बात है
1: और इन साथ मीठी चटनी हमारे स्टॉल री इमली और गुटरी में बनावा वह भी लोग बहुत पसंद करे।
2: अच्छा तो आप मतलब इतनी तरह की चीजा रखो तो एक दिन की तैयारी किन तरीका हो मसाला पानी और दूसरी चीजा भी तैयार करने में कितना समय आपने लाग जावे।
1: समय तो माने नहीं तैयारी में 5-6 घंटा लाग जावे क्योंकि मैं मार्केट पहले फ्रेश सब्जियां ले नवा पचवियां ने साफ धो परी इन पचवियां ने पुदीना धनिया सब हो ने मिक्सी में पीसन चटनी भी बनावा पचवी ने पानी बनावा आलू भी काटन उबाला बियान पच मैश करा छीला वगैरह तो दिन भर रो काम माने वही जे।
2: अच्छा तो पर शाम रे कितनी बजे तक आप स्टॉल लगा दो।
1: शाम रे 5:30 बजे मैं स्टॉल लगावा 5:30 9 बजे तक स्टॉल रखा मैं।

0: बिल्कुल ऐसे रह जी। जी हाँ, अभी यह बताया कि सुबह हो ले शाम तक आप व्यस्त ही रहो, तो जिस टाइम आप पानी पूरी रो व्यवसाय शुरू करियो, विन समय आप दिमाग में कई लाग रही हो कि ओ व्यवसाय कितो चाली इरो कहीं रिजल्ट निकली, या आप कुछ भी नहीं सोचो कि चलो देखी जाए, आपने मन में कहीं चाल रही हो।
1: बिल्कुल, उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था तब हमसे पहले भी काफ़ी भैया वहाँ पे लगाते थे, तो उनका मतलब 2 महीने चलता था फिर रुक जाता था, तो हमें थोड़ा डर तो था उस वक्त, लेकिन जब शुरुआत की, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, हम जैसे क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे लोग मतलब खेती बाड़ी का काम मतलब ज़्यादा करते हैं, तो उनको थोड़ा मतलब साफ़ सफाई और अच्छा खाना पसंद है, थोड़ा बाहर का कम खाते, तो उस हिसाब से जब हमने उन्हें ज़्यादा अच्छा देना शुरू किया तो फिर हमें सपोर्ट, फुल सपोर्ट मिला वहाँ से।
0: बिल्कुल सही बात, क्योंकि पानी पूरी दुकान है तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे,
1: हाँ
0: फिर भी वो वापस आप व्यवसाय शुरू करो तो कोई ना कोई पीछे कारण तो रहे। तो जब आप पानी बनाओ तो भी मैं इसको कुछ खास चीज डालो कि वो आपने पानी पूरी जिकी है लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद आवे।
1: वो हाथों हुनरी जे
0: हाँ
1: मयूट सी कन पानी बनाना शुरू करियो, और वो हाथों अपन ना टेस्ट आदा जन लोगा ने नहीं बढ़िया लगे, और नहीं मैं हाइजीन नो पूरो ध्यान रखा, ग्लव्स पैरन खिलावा और पूरी साफ सफाई हाथे घरे सब कुछ बनान तैयार करा एकदम अच्छी तरह जन लोगा ज्यादा पसंद आवे।

0: तो सोशल मीडिया और डिजिटल रील्स जी के वे आप रहे इन व्यवसाय ने आगे बढ़ाने में किन तरीकों में मददगार साबित हुई है?
1: पहले तो मैं सोशल मीडिया में तो नहीं था, मैंने कोई पेज वगैरह नहीं था। पचे बाद में मैंने गांव रे एरिया में स्टॉल लगाएड़ो, जने बारे वाले लोग तक नहीं जा रही थी बात कि हाँ भाई तो स्टॉल लगाएड़ो है और अच्छी चीज हैंगा खिला रही है हम। जने माँ ने कही रे वीडियो बनाना शुरू करियो और मैं एक वीडियो बनाई उन माँ, तो मैंने पहली बार में 2000 व्यूज आगा जब माँ की हमें अपन वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि लोग अपन स्टॉल मत आई वे देख हाँ बढ़िया टेस्ट है, जने अपने भी सपोर्ट मिली और वीडियो बनाना मान शादी में भी ऑर्डर मिलिया, रिटायरमेंट में भी ऑर्डर मिलिया, बर्थडे पार्टी में भी ऑर्डर मिलिया, जाना वीडियो सपोर्ट हुई मैं आगे बढ़ रही हूँ। इन वास्ते मैं मान काम वास्ते वीडियो भी बना रही हूँ।

0: जितनी मैं इनकम कमे जो मन परिवार चलोन वास्ते और स्टॉल चलोन वास्ते ही हमें तक लग गई है।
1: बिल्कुल ऐसे मुझे एक बात बताओ कि जद बोल रहे हैं कि मैं लोग सब मिल परा काम करा, तो आप दोनों बेने आ रहे माए मतलब जी को काम बांटो वो क्या बांटो, और कदिया भी हुआ कि आपस में थोड़ी नोकझोंक हुई है कि तू काम ज्यादा करो या तू कम काम करो, या आज मैं बहुत ज्यादा मतलब काम करो और तू बिल्कुल भी काम करो, इस तरह से छोटी मोटी नोकझोंक भी होती
2: है। हाँ भाई बहन का रिश्ता है तो नोकझोंक तो होनी बनती है। और वैसे हाँ काफी मतलब समझ अब थोड़ी मतलब कहते ना वो घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी समझदारी अपने आप आने लगती है, तो इनको कोई काम होता है बाहर जाते हैं तो वो खुद ब खुद लगता है कि हाँ ये काम हमें कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉल इस टाइम लगेगा, कस्टमर वेट करेंगे, दिमाग में वही रहता है अब, और थोड़ा काम में बिजी रहता है तो नोकझोंक अपने आप कम होती है।

0: कदी ये होया कि कस्टमर आयोड़ा है और पानी पता से आप बांट रहे हैं और अचानक आप रो भी मन करियो है खाने की कुछ दो पुचका खा लेवा
1: ए मसालो बनावा नहीं उन टाइम मारो बहुत मन करे खाऊ ना। मैं कह तू मन्ने भी थोड़े खिला दो, पहले गिरा का वास्ते पचे
0: तो
1: आपरे
0: आप
1: वास्ते।
0: हमेशा टेस्ट करो कि भाई इनो स्वाद
1: हाँ, मैं
0: के
1: पानी पूरी बनावा नहीं, जद मैं पानी बनावा जाने नहीं, खुद साइड में कटोरी निकाल टेस्ट करे भाई की करे टेस्ट सेट हो नहीं हो, पहले अच्छी तरह बना पची स्टॉल मान ली जावन सर्व करा लो
0: तो
1: गाने।
0: जी चटपटी बात चल रही, तो एक चीज और बताओ कि अक्सर जब पानी पताशा आपा खा

0: के आवा, मेरे बाद एक लास्ट में पापड़ी चाट बना देवा, तो वह पापड़ी चाट बड़ी ही चोखी लागे। ये कारण कहीं है?
1: इन कारण होय जे सुकी पपड़ी में तालुर मसाला होवे साथे काला नमक रो फ्लेवर होवे जन वो और भी बढ़िया लगे,
0: क्योंकि कोई भी हो पूरी चीज रो पेमेंट हुआ है, पर आज की पापड़ी चाट जी की आपा के वहां आ फ्री हुए, ये रो कोई कॉस्ट नहीं लगे, तो कहीं इर वजह से मैं बहुत ज्यादा स्वाद बन गया। हां
1: हो सके फ्री चीज ज्यादा स्वाद लगे,
0: नहीं हमें कि बोला पानी पता चा पूरा हो चुका है। फिर बात क्या है कि एक एक पापड़ी चाट तो और दो, तो पापड़ी चाट बढ़िया बना दे, कई बार यहाँ भी होते एक और दो
2: पानी भी एक्स्ट्रा
0: आप दो,
1: मतलब और दे नहीं पड़े गिरा करने, नाराज नहीं कर सका, एक्स्ट्रा मांगे जन एक्स्ट्रा भी खिलानी पड़े, कोई एक एक्स्ट्रा मांग ले कोई दो एक्स्ट्रा मांग ले तो दे नहीं पड़े,
2: मना नहीं कर सके।
1: हाँ पानी तो माने चटपट तो इतना बढ़िया लगे, दो दो तीन तीन कटोरी पी जावे लोग, तो अच्छा पानी है।
2: तो इन महीने पानी कितना फ्लेवर होया करे?
1: माँ रेगुलर फ्लेवर बनावा, क्योंकि माने उठे एरिया में रेगुलर फ्लेवर ही चले अब बार, तो उन हिसाब माँ रेगुलर फ्लेवर रहा के हाथ इमली चटनी मीठो पानी भी रहा के वो भी लोगों बहुत पसंद आवे।
0: तो जी हाँ देखो आज वैश्विक अभिवाद दिवस भी है, तो आप अपने माता पिता के बारे में कहीं कहना चाहोगा? दोनों बहन
1: मैं यूज कहने चाहवा, मारे मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल करी है लाइफ मैंने, क्योंकि छह टाबर ने मोटा करना कोई आसान काम नहीं है, और पापा मजूरी करता तो उन्हें सब।
0: आप बताओ
3: आज के टाइम में, मतलब जब हम छोटे थे तब हमने सुना है लोगों से कि पांच पांच लड़कियां हैं कैसे संभालेंगे छोटा लड़का है, तो वो सब काफी मुश्किल होता है, लेकिन आज के टाइम में जब हम काम करते हैं तो वही लोग कहते हैं कि लड़कियों ने घर संभाल लिया है लड़कों से भी अच्छा, तो ये सुन के काफी अच्छा लगता है।
2: बिल्कुल, आज बहुत सारे युवा साथी है जो नौकरी न मिलने से निराश है, या आप लोग छोटो काम शुरू करने से कतरा रहा है कि भाई छोटा स्तर मत मैं की कर शुरू करूँ, मारकन तो इतना पाई कोनी मैं क्या शुरू करूँ, पर आप इन आकाशवाणी के मन सुवे युवा मन कहीं कहनी चाहो?
1: जद माँ काम शुरू करियो दन मानकर ने भी पैया नहीं था, माने भी ये नहीं, मार फ्रेंड 2000 रुपया उधार दिया उन्हें माँ काम स्टार्ट करियो, आप छोटा स्तर में भी काम शुरू कर सको आप रो, और उन टाइम आप यो मत सोचा करो छोटो काम है नहीं, काम कोई भी छोटो बड़ो नहीं होया करे, आपने आप रो काम जो आप पहचान दिलाया करे, तो आप छोटा स्तर भी आप रो काम शुरू कर सको।
2: बिल्कुल, कोई भी काम करो अभी शुरुआत तो छोटा रूप ही होया करे, धीरे धीरे आगे बढ़ जाया करे।
0: तो जी कदिया भी हुए कि आपने पानी पता चलो जिसको आप स्टोर लगा रखे और बहुत सारी जिसकी सहेलियां हैं बे आवे और एक दूसरे ने मतलब यहाँ शर्त रखे कि आज सबसे ज्यादा जिसको पानी पता सो खाए वो ही पेमेंट करे, या आज जिसको बहुत ज्यादा कम खाए वो पेमेंट करे, कभी इस तरह भी प्रतियोगिता होगा?
1: हाँ यू चैलेंज हुई है माने स्टॉल माते, और वे जो चैलेंज करी वे नौ नौ प्लेट खाई है, पर जिनको आप गिव अप कर दिया मैं नहीं खा सकूं पर वो पेमेंट करी है,
0: तो एक व्यक्ति है मतलब आमतौर पर कितना पानी पताशा खा ले, क्योंकि आपने तो अनुभव है।
1: हाँ
0: तो कितना पताशा खा ले पानी पताशा?
3: मैंने अभी तक जितने लोगों को खिलाया है ये मतलब 100 रुपए, लगभग 100 रुपए, क्योंकि इसमें 40-50 पीस हो जाते हैं, तो एक आदमी कैपेसिटी इतनी होती है मेरे हिसाब से, मैंने अब तक जितना खिलाया है, वैसे लोग काफी अच्छा मतलब होता है, जोधपुर वालों की तो कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है खाने पीने में,
2: चटपटो और तीखो ही पसंद करे। हाँ। तो जब स्टॉल में भीड़ रहे तो जब देखो कोई आदमी कितना ही खावे कोई कितना ही खावे, तो आपने क्या ध्यान रहे कि भाई ओ आदमी इतना खाया इन्हें इतना पेमेंट लेना है, और इतना खाया इन्हें इतना पेमेंट लेना है, तो वो दिमाग में आप की कर रखो?
3: शुरुआत में तो काफी दिक्कत हुई थी गिनने में कि किस मतलब कौन से कस्टमर के कितने हुए, अभी भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन हाँ जब हम काम करते हैं, जब मैं खिलाती हूँ और ये चाट काउंटर संभाल लेते हैं, तो मैं गिनने में मतलब थोड़ा यू शांत रहती हूँ कि हाँ पहले ये हो जाए, उसके बाद कोई डिस्कशन करना है तो उसके बाद करेंगे, पहले कस्टमर फर्स्ट है हमारे लिए।
1: क्योंकि कोई कोई लोग बीच में पूछ लेते हैं ना कि आपका चैनल क्या है वगैरह, ऐसे बात करते ना तो फिर वो हट जाता है, इसलिए ना बाद में गिनती भूल जाते हैं, तो वैसा नहीं होता है, मैं साथ में कर रहती हूँ, मैं कस्टमर संभाल लेती हूँ, कोई सवाल जवाब होता है तो मैं जवाब दे देती हूँ, ये इनका फोकस पूरा होता है, तो कोई कोई लोग ऐसे पूरा भी मान जाते हैं कि इनके अंदर तो घमंड है ये जवाब नहीं दे रहे हम पूछ रहे तो बोलू, लेकिन वो बात नहीं होती, ये ना उनका ध्यान व गिनती पे होता है कि हाँ भाई वो भी रखना जरूरी है,
3: एक ज्यादा दे तो चलता है लेकिन एक कम दे तो शायद कस्टमर भी टूट सकता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना।
0: तो आप स्टोर में सबसे ज्यादा जगह कस्टमर किन उम्र रहा है?
1: हाँ माने स्टॉल में तो सब उम्र आवे, ज्यादा तो टाबरी है जा आपरे मम्मी ने ले लेना आवे, क्या मम्मी हालो माने तो बटे जीजी गिफ्ट भी देवे कनी कनी माने पपड़ी भी फ्री में दे देवे, तो थे माने बटे जी स्टॉल में तो लेन हालो, तो टाबरिया मतलब सब उम्र आवे माने वटी ने।

0: तो देखो आपा बहुत बातें कर ली, और पानी पूरी के बारे में, आप व्यवसाय के बारे में भी बात काफी कर चुके हैं, तो भविष्य रे माए आप व्यवसाय के बारे में कहीं सोच रहे हो, आपरो कहीं सपना है जो को आप पूरा करना चाहो?
1: देखो मैं किराया स्टॉल में तो खुद रो स्टॉल बनाया, अब
0: हाँ
1: एनी मतलब डिमांड है सब बारी के, आई अगर दुकान होती तो कितना बढ़िया रहे, तो मैं आगे यूं सोचा कि स्टॉल में दुकान तक रो सफर भी आपरी कृपा में जल्दी तय करा मतलब, और आप सब यूं सपोर्ट कर ला तो मैं मानी दुकान रेस्टोरेंट सब वाला, बस आप लोग सब सपोर्ट चाहिए और की नहीं।
0: बिल्कुल, आप रे केवे ने हौसला मेरी उड़ान जी की है, बा अगर मजबूत रहेली तो आप रे जो को सपना है जो बहुत जल्दी पूरा भी होवेला, और आपने भविष्य वास्ते बहुत सारी शुभकामना भी देवा।
1: बिल्कुल। तो आज आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में अपने संगे आ लाजवाब स्वाद और बेमिसाल हौसला री मिसाल बीए पानीपुरी वाली रजनी साखला और ऐश्वर्या साखला। जो पानीपुरी रो जिको पानी होया करे वो तीखो और खट्टो होया करे, वो मिलने ही स्वाद है जिको बनाया करे, उन्हीं तरीकों सुख और दुख दोनों मिलने जिंदगी ने खूबसूरत बना दिया करे। तो आप दोनों रो कीमती वक्त आप माने साथे साझा करियो, इन वास्ते पूरी जोधपुर आकाशवाणी टीम री तरफ सु और माना सुड़न वाला सगला श्रोतागण री तरफ सु आप
0: आपरो
1: बड़ो
0: बहुत बहुत आभार है।
1: माने तरफ भी आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी टीम ने और सब श्रोतागण ने बहुत बहुत धन्यवाद माने तरफ भी माने सुनने वास्ते। आपने हमें बुलाया और अपना कीमती समय आपने हमारे साथ बिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: तो बिल्कुल एडी दो बहना ने बिल्कुल शाबाशी आए कि वह आज इन स्तर पर काम कर रही है। और मतलब एक जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख ने नौकरी करो, अब आप इस तरह से कोई छोटा मोटा व्यवसाय है वो भी शुरू कर सको। समाज यहाँ सोचे कि पढ़ लिख लिया हो तो आप नौकरी चढ़ जाओ।
1: देखो पूनम जी, समाजरी बात जिकी है वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जिकी अपन ने माननी भी जरूरी है। आप यहाँ नहीं कि वहाँ कि समाज रो उल्लंघन करा, पर आपा अगर जिको अपन रस्तो अगर सही है, आपा गलत काम कौन कर रहा है, तो फिर कई बार यहाँ है कि समाज री कुछ बातें जिकी है बाने अनदेखो कर आपा अपनों कैरियर है जिको बनाना जरूरी है। और पूनम जी पानीपुरी री बात करें तो देखो आपने अलग अलग राज्य में पानीपुरी ने अलग अलग किया जाए, जहाँ उत्तर भारत में गोलगप्पा कहें वहाँ, और इनमें कहें कि आलू छोटा भरीजिए और इनमें तीखोपन बहुत ज़्यादा होया करें। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें या असम री बात करें तो बड़ा इन्हें पुचका किया करें, और आलू और इमली रो पानी इनमें डाले करें सागे मिला, और इमें छोला जिका है काला वाला छोला बे डाल लीजिए, सफ़ेद छोला है जिका नहीं डाले, और उड़ीसा रे माए है जिका इन्हें गुपचुप नाम से पुकारे जावे।
0: बिल्कुल। और पानी पूरी रो जी को पानी होया करे वो पाचन रे वास्ते भी बहुत फायदेमंद रहा करे, क्योंकि उन रे मायने इमली होया करे, पुदीनो होया करे, जीरो होया करे, हींग होया करे, तो अब सब पाचन रे मायने सहायक होया करे चीजा।
1: और अब बार तो देखो गर्मी की छुट्टियां हैं पूनम जी,

0: तो बच्चा जी का है, अपन कोई ना कोई फरमाइश है जी की करता ही रहे, और खासकर ऐसा सब चीज़ें ज़्यादा फरमाइश होया करें।
1: बिल्कुल
0: और पानी पूरी रो जो को पानी है जो को अपना वो तो बिया भी अपा मतलब आम दिना में भी बना पर अगर पिया तो सेहत वास्ते अच्छा ही है। और आप बोल रहे हैं पूनम जी की कुछ योजना भी है जिसका हम लाभ उठा
1: हाँ
0: सकें।
1: बिल्कुल, सरकार योजना भी चला, क्योंकि कोई महिला आर्थिक तंगी की वजह से वो आप स्टार्टअप नहीं कर पावे, तो सरकारी योजना है जैन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, तो उनके सहारे से आप कोई भी छोटे मोटे व्यवसाय है वो शुरू कर सको। हो
0: बिल्कुल। और देखो ये व्यवसाय जी का है नहीं पूनम जी, आपने कुछ नयो करने मतलब एक प्रेरणा देवे। आप देखो कि आज अपा ए दो बहनों मिली तो अपन को पता चले कि पानी पूरी और उस काम भी व्यक्ति आप आत्मनिर्भर बन पर बहुत कुछ कर सके।
1: बिल्कुल
0: समय री मांग है नहीं बा भी अनुसार अपा अगर अपा कोई भी काम करा पूनम जी तो अपा सक्सेस है जिसका जरूरी। और सबसे बड़ी बात है मेहनत और लगन री। अगर
1: बिल्कुल
0: आपने मन में मेहनत करने की इच्छा है, आप लगन है, आप में समर्पण रहा भाव है, आप कुछ नयो सीखो। और आजकल तो पूनम जी भैया भी देखो कि इतना मतलब वेबसाइट है बन गई कि बट वो आप नई नई चीज़ें जिके है, नए नए आइडिया जो का है वो ले पर आप कोई भी काम है जो को शुरू कर सको।

0: तो देखो पूनम जी, आज अपना शक्ति बोले कार्यक्रम है जिसको मैंने हमारे से ले रहा है। तो आज रही शक्ति बोले कार्यक्रम में आप सगी दो सखियां पूनम देवड़ा आराधना जोशी, आज री प्रस्तुति ही राजेश लामरोड।
1: बिल्कुल, और संयोजनों मनीष सोलंकी रो इनरे साथ ही कार्यक्रम रो समय भी पूरा होवन लाग्यो है। तो आपरी दोनों सखिया ने दिराव सी चाला
0: चाला
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान

0: ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल हैं। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और

0: एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इरा

0: अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एपिसोड संख्या 1296।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हम

0: हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं,
0: जी
1: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में।
0: जी
1: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
0: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
1: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना,
0: जी
1: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है,
0: बिल्कुल
1: सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना।
0: जी
1: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं।
0: जी
1: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड
0: जी
1: डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक
0: जी
1: है,
0: जी
1: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है।
0: जी
1: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हों किताबें, रिकॉर्डेड हों,
0: जी
1: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती हैं।
0: जी
1: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं,
0: जी
1: तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
0: जी आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
1: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं।
0: जी
1: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी।
0: जी
1: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्यधारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी,
0: जी
1: शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ।
0: जी
1: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्यधारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि
0: जी
1: एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।

0: प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
1: बिल्कुल।
0: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
1: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
0: जी,
1: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
0: जी,
1: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
0: जी,
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
0: जी,
1: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
0: जी।
1: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
0: जी।
1: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
0: जी।
1: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
0: जी।
1: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
0: जी।
1: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
0: जी।
1: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
0: जी।
1: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है, तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
0: जी।
1: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
0: जी।
1: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
0: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
0: जी।
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
0: जी।
1: हैं, जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
0: जी
1: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की,
0: जी
1: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
0: जी
1: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद

0: कि जन्म से है।
1: जी
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते,
1: जी
0: अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
1: जी
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
1: जी
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल
1: इस्तेमाल करते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की
1: जी
0: भाषा
1: जी
0: में,
1: जी
0: मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से। उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
1: जी
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
1: जी
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
1: जी
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है।
1: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
0: जी
1: और समावेशी शिक्षा के बारे में
0: जी
1: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या-क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
1: जी
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
1: जी
0: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
1: जी
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है,
1: जी
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
1: जी
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
1: जी
0: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है,
1: जी
0: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: जी
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के
1: जी
0: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
1: जी
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
1: जी
0: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
1: जी
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप होना
0: व्हीलचेयर
1: चाहिए
0: आसानी से पहुंच जाए।
1: जी
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो।
1: जी
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा,
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचान

0: जानने के लिए एक जांच सूची बनाना
1: जी.
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त. प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है
1: जी.
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी.
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से
1: जी.
0: मिल सकती हैं. आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी.
1: जी.
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी.
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है.
1: बिल्कुल,
0: गूगल
1: बिल्कुल.
0: पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक्स सीआईटी एनसीईआरटी, आपको
1: जी
0: सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं.
1: जी
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं.
1: जी.
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी. तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और
1: जी.
0: साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं.
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी. अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं.
1: जी,
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं,
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी.
0: है. तो सबसे बड़ी बात तो यही है. और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं.
1: जी,
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है.
1: जी बिल्कुल. तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है. मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है. उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की. इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है. दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत. तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए. साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है. एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी.
1: जी,
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके.
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा.
1: जी,
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा. तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं.
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए.

0: आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत हैं युवा शक्ति को समर्पित कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, हर शाम आवाज़ों का जादू इस कदर छा जाता है कि कदम खुद ब खुद रेडियो की तरफ खींचे चले आते हैं। और इस आवाज़ का नाम है नीतीश। साल के 365 दिनों में से आज 1 जून यानी इस साल का 152वां दिन, 151 दिन हमारी जिंदगी की किताब में दर्ज हो चुके हैं और 214 दिन अभी भी हमारे इंतज़ार में। वक्त की सुइयां आगे बढ़ती रहेगी, कैलेंडर के पन्ने बदलते रहेंगे, साल दर साल गुजरते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलेगी, वो है आपका और हमारा प्यार। और भला ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसे गीतों से प्यार ना हो। शाम तो वैसे भी हसीन होती है और पर और सुहानी हो जाती है जब दिल की पसंद के नगमे है ना हवा में गुल जाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी पसंद के गीतों, अपने संदेशों और ढेर सारी यादों के साथ। और इन्हीं यादों के साथ मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम आज की शाम आपके साथ राहुल। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत कुछ मज़ेदार सी लाइनों से कर दो तो कैसा रहेगा। किसी ने बड़ा खूब कहा ना कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है दोस्त जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। आज भले ही ज़माना डिजिटल हो गया है लेकिन भावनाओं की स्याही जो है वो आज भी सूखी नहीं है, क्योंकि आज भी आप हमें अपने दिल की बातें, अपने अपनों के पैगाम और अपनी पसंद के गीत लिखकर भेजते हैं और हम उन्हें प्यार से सजाकर लेकर आते हैं युवा पसंद फरमाइशी कार्यक्रम में। तो जुट रहिए हमारे साथ, इस आवाज़ का नाम राहुल और आज विशेष प्रोग्राम युवा पसंद फरमाइशी ओनली ऑन 102.1। और यहाँ गीत हैं, आपकी पसंद के एहसास हैं और आपकी खूबसूरत सी भावनाएं हैं। पढ़ेंगे आगे, सुनेंगे आज की शाम का पहला म्यूजिकल ट्रैक

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म कॉकटेल 2 का गीत तुझको अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की युगल आवाज़ में। और फिलहाल आप युवाणी एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन FM 102.1 पे नितेश और राहुल के साथ।
1: जय बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल और आपका फरमाइशी प्रोग्राम जहां गाने सिर्फ बजते नहीं हैं बल्कि रिश्तों की खुशबू लेकर आते हैं, जहां आप हमें अपने चाहने वालों के नाम, उनकी पसंद के गाने और दिल से निकलने वाले जज्बात भेजते हैं, कभी खत के ज़रिए तो कभी मेल के ज़रिए। और बची कुछ फरमाइश हमारे साथ जो है सबसे इजी माध्यम हमारा जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आ जाते हैं। अगर आप भी किसी अपने के लिए कोई भी गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमें हमारे इस एड्रेस पर भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल जी हाँ राहुल, जो हमारा ऑफिस एड्रेस है वो है आकाशवाणी जोधपुर पावटा सी रोड, जो हमारा मेल एड्रेस है वो युवा पसंद जोधपुर @gmail.com और जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो है 9413329359।
1: जी बिल्कुल, आपका संदेश पहुंचेगा और आपकी फरमाइश ज़रूर बजेगी आपकी रेडियो पर। तो चलिए दोस्तों, रिश्तों की मिठास, यादों की खुशबू और दिलों को जुड़ने वाले गीतों का यह सिलसिला शुरू करते हैं। और आज की जो पहली फरमाइश है वो आई है बिजीस जोधपुर से, अभिषेक, कुलदीप, सोनल, राजमंदोज, अमित और सुखराम की तरफ से।

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युवानी में, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन एफएम 102.1 पे नितेश और राहुल के साथ।
1: जी बिल्कुल, प्रोग्राम युवानी को एंजॉय कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम बड़ा ही खास, बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम आप फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं और युवा पसंद फरमाइशी कार्यक्रम में जो है वो फरमाइशों का पिटारा खुल चुका है। अगली फरमाइश भी हमारे सामने आ चुकी है। कार्यक्रम युवानी युवा पसंद आपको हार्दिक नमस्कार लिखते हैं और कह रहे हैं कि एक नगमा सुना दीजिए, और इन्होंने फिल्म का नाम बताया है लव आजकल, गीत है चोर बजारी, और ये शख्स हैं भोपालगढ़ राजस्थान से जिनका नाम है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से। और लिखते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो ज़रूर शामिल कीजिएगा, आपका मैसेज भी शामिल करेंगे और आपका जो मनपसंद गीत है वो भी बजाया जाएगा। जी बिल्कुल, बजा दीजिए इनका फेवरेट वाला सॉन्ग।

वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से प्रोग्राम यौनी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप और यू ऑफ फरमाइशी कार्यक्रम चल रहा है। फरमाइशों का पिटारा खुल चुका है, अगली फरमाइश बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है और वो ये है कि भाई गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छींदा जसवीर सीता और गीता, साथ ही साथ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से भी फरमाइश आई है जो कि है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल डॉक्टर अमनदीप, और साथ ही साथ बात करूं मैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की तरफ से। अगली फरमाइश जो है वो है दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा की तरफ से, और साथ ही साथ पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह की तरफ से। आप और मिलकर सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सबसे ट्रैक।

0: इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम युववाणी में, जहां मंडे स्पेशल फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है और वही देश भर के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो गया। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया और इस बार आईआईटी दिल्ली जोन के छात्र शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक पहली प्राप्त की। और राहुल, खास बात ये रही कि टॉप तीन में आईआईटी दिल्ली जोन का दबदबा देखने को मिला, जहां कबीर सिल्लर दूसरे रैंक पर और जतिन चहर तीसरे रैंक पर थे।
1: जी हाँ, इस वर्ष जेईई एडवांस 2026 में 179,694 स्टूडेंट ने जो है वो परीक्षा दी थी, जिसमें 56,880 स्टूडेंट उम्मीदवार जो है वो सफल घोषित हुए। और उम्मीदवार जितने भी जिन भी लोगों ने अपना ये जो एग्ज़ाम दिया है, इसका परिणाम जो है वो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि है jeeadv.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, jeeadv.ac.in, इस वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
0: बिल्कुल राहुल, और इसी जेईई एडवांस के सफर को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे आज के जो खास गेस्ट हैं उनसे हम बात करते हैं। जी हाँ, जेईई एडवांस 2026 रैंकर 117 जिन्होंने रैंक प्राप्त की है इस बार के रिजल्ट में, वो है आदित्य सारन, जिसे बात की है राहुल ने और इसकी प्रस्तुति है राजेश लामरोड की। तो चलिए इस इंटरव्यू को सुनते हैं।
1: वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल, और एज वी नो, जैसे कि हम सभी को पता है, आईआईटी जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ चुका है और इस एग्ज़ाम में रैंक 117 प्राप्त करने वाले आदित्य सारण हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। आदित्य, मैं चाहूँगा आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
2: जी, मेरा नाम आदित्य सारण है, मैं जोधपुर का निवासी हूँ और मेरा मूल गाँव भोपालगढ़ के पास कुड़ी है। मैं 2 सालों से आईआईटी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ कोचिंग में, और साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना जोधपुर में 11th और 12th CBSE के थ्रू अपने 12th क्लासेस भी कर रहा था।
1: ओके आदित्य, मैं जानना चाहूंगा आपसे, अभी जो आईआईटी की जो तैयारी है वो कब दिमाग में आया, कब शुरू हुई, किस तरह से, इसके पीछे की क्या कहानी है?
2: एक्चुअली आईआईटी के बारे में मैं बचपन से ही दिल्ली में रहता था और वहाँ

0: दिल्ली आईआईटी के पास में मेरा घर था, तो बचपन से मेरे दिमाग में सेट था कि करनी है तो आईआईटी करनी है। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, मेरे जो अंदर इंटरेस्ट है टुवर्ड्स मैथमेटिक्स साइंसेज एंड दीज टेक्निकल स्टडीज वो भी डेवलप होता रहा, और 9th तक आते ही कंफर्म हो गया कि पीसीएम लेके आईआईटी जेई की तैयारी करनी है।
1: ओके, आईआईटी जेई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है आपने किस पर्पज़ से जो है वो इस एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करी है, तो आगे की क्या स्कोप होते हैं? आप जेई एडवांस में अच्छी रैंक प्राप्त कर कर क्या और चीज़ें कर सकते हैं आप? क्या होता है इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए।
0: एक्चुअली जेई एडवांस में अच्छी रैंक प्राप्त करना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जेई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज, आईआईएससी और ट्रिपल आईआईटी से लेके काफी सारी ऐसे कॉलेजेस है जो एडमिशन आईआईटी जेई के थ्रू देती है। एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि आईआईटी के अंदर जाके जो प्रेस्टीजियस एनवायरमेंट में आप रहते हो, जो कंपटीशन होता है, जो प्लेसमेंट ऑफर होते हैं, वो आईआईटी उन सब के अंदर एक प्रीमियम कॉलेज है। और सिर्फ आईआईटी की बात ना करें तो आईआईटी एडवांस की जो रैंक है वो ट्रिपल आईआईटी और आईआईएससी, शिवपुर, ऐसे काफी सारी और कॉलेजेस भी है जिनमें आपको काफी सारे कोर्सेज के अंदर सीट के लिए काम में आता है।
1: ओके आदित्य, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जब से इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करी है, तो होता क्या है ना कि हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है और अपनी अपनी वीकनेसेस होती है, तो आपकी क्या स्ट्रेंथ थी? किस सब्जेक्ट पर आपको लगता था कि इस सब्जेक्ट पर मेरी कमांड बहुत अच्छी है, और कहाँ आपको लगता था कि यार मुझे इस सब्जेक्ट पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है?
0: वैसे स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी शुरू से ही अच्छी रही है। बहुत शुरू शुरू में लगता था कि मैथ्स मेरी थोड़ी वीक चल रही थी, बिकॉज जब तक मैं 10th में था मैंने इतने अच्छी लेवल की मैथ्स पढ़ी नहीं थी। जो आईआईटी जे लेवल की मैथ्स होती है वो एक्चुअली 10th से काफी ऊपर होती है, और एकदम ट्रांजिशन करके 10th से 11th में आते हैं तब आप वो पढ़ते हो, तो एक बार को एक बैकलैश सा फील होता है कि इस तरीके तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो शुरू शुरू में लगता था कि ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी क्योंकि उसके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो भी थोड़े आसान होते हैं, उनमें अच्छे से कोप अप करना, उनको समझना भी आसान होता है। बट मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं था क्योंकि रीजन मैं आपको बता चुका हूँ।
1: ओके आदित्य, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि सभी को हम देखते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे वो ऐसे आईआईटी नीट एग्ज़ाम की कोई तैयारी हो, होता क्या है ना कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई गलती जो है वो कर ही देते हैं, किसी न किसी रूप में हो जाती है, ठीक है? तो आप वो क्या बताना चाहेंगे कि भाई यार ये गलती मैंने करी है, ये आने वाला एस्पिरेंट इस गलती को तो बिल्कुल भी ना दोहराए? आपसे ऐसी कुछ कुछ छोटी मोटी कुछ गलतियाँ हुई है जो आप बताना चाहते हैं कि यार अगला जो एस्पिरेंट आने वाला, जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो इस गलती से थोड़ा संभल कर रहा है?
0: देखो, ऐसे तैयारियों में सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप मान लो आपकी किसी मॉक टेस्ट के अंदर, किसी नॉर्मल टेस्ट के अंदर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो एक लेट डाउन सा फील होता है सबको। बट उस लेट डाउन से जो कोप अप नहीं कर पाते वो किसी की इनएबिलिटी होती है, किसी के लिए वो गलती होती है। तो मैंने जब मेरे स्टार्टिंग में एक दो पेपर हुए थे, वो थोड़े टफ लेवल के पेपर भी थे, उसमें ऐसा नहीं था कि मेरी रैंक अच्छी नहीं आई या फिर मेरा बहुत गंदा गया, बट मैं जिस तरीके से चाहता था वो मैं कर नहीं पाया उस पेपर के अंदर। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप अपने स्टैंडर्ड क्या सेट करते हो। अगर आपने अपनी कैपेबिलिटीज और एबिलिटी से ज्यादा अपना स्टैंडर्ड सेट करा है और फिर आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए मतलब बहुत दर्दनाक दर्दनाक होता है बाद में, जब आपने वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पा रहे होते। कोई भी एक स्टूडेंट होता है वो हमेशा एक दिमाग में लेके चलता है कि हाँ, मेरे को इस तरीके की पढ़ाई करनी है, इतनी मेरे को रैंक लानी है, जो कि सही नहीं होता है कि ऐसे दिमाग में लेके चलना, क्योंकि पढ़ाई करते समय बस हमें पढ़ाई करनी है, रैंक जो आएगी वो हमें मंजूर होगी। बट आपको भी पता है कि बच्चों के दिमाग में चीजें तो आ जाती है और उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल होता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, और प्रोग्राम में बातचीत में आगे बढ़ेंगे। आदित्य, मैं एक खास बात आपसे जानना चाहूँगा, आजकल जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया जो है वो कई जगह ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आजकल की जो इस एज के जो और बच्चे होते हैं हमारे आसपास, सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उसी में अपने उसी में अपना समय जो है वो व्यतीत कर देते हैं, और पढ़ाई जो है वो इस चक्कर में पीछे रह जाती है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि आपने इस जो है सोशल मीडिया के कल्चर से अपने आप को किस तरह से दूर रखा, और जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो इससे किस तरह से बच सकता है?
0: सही बताऊं तो सोशल मीडिया के कल्चर में मैं ज्यादा पढ़ा ही नहीं था। 9th क्लास के अंदर मैंने मतलब कुछ समय के लिए

0: इंस्टाग्राम खोला था, फिर वो वापस बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे को कुछ लगा नहीं इंस्टाग्राम के अंदर। आप रील्स देखो, आप ये सब करो, वो मतलब मेरे टाइप की चीज थी नहीं। मेरे को पहले ही पता था ये तो मैं नहीं करूंगा। और उसके बाद से 10th के बाद तो मेरे पास ना मतलब खुद का मोबाइल भी नहीं था, और मतलब 9th तक मैं खुद का मोबाइल रखता था, 10th में मैंने मेरा मोबाइल छोड़ दिया। मोबाइल के साथ साथ कोई भी मतलब मोबाइल ऐसा भी नहीं कि मैं मम्मी का लेके थोड़ा चला रहा हूँ, बस मोबाइल अगर उठाना है तो पढ़ाई की किसी चीज के लिए उठाना है, फिर से किसी पढ़ाई के रिलेटेड चीज के लिए ही मैं मोबाइल का यूज करता था। और 10 से 15 मिनट से ज्यादा मेरे मोबाइल का यूज होता भी नहीं था दिन के अंदर। तो सही बताऊँ तो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट में इतना आया नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से ही सोशल मीडिया के अंदर होते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह इनके ऊपर, यूट्यूब पे वो अपने वीडियोस बनाते हैं। तो ऐसा है कि दिन में काफी टाइम होता है हमारे पास में, अगर हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं तो। अगर वो एक लिमिटेड सेट रिस्ट्रेन टाइम के अंदर उसे चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम पे कोई रील्स बनाता है, तो अब सबसे बढ़िया चीज तो ये होगी कि रील्स बनाना बंद कर दो। बट अगर बंद करना नहीं चाह पा रहे हो, या फिर बच्चे हैं नहीं हो रहा है, रील्स बंद नहीं हो रही है, तो ये है कि उसे रेस्ट्रिक्ट करो, आधे घंटे करो, आधे घंटे से 10-15 मिनट पे ले आओ, एग्जाम के आसपास आ जाओ तब एक बार रोक दो। तो ऐसे जब कंट्रोल वे में करोगे तो ठीक है, वो थोड़ा आपको रिफ्रेशमेंट भी देगा, उससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बट सबसे सही तो यही होगा कि कंप्लीटली सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, क्योंकि वो कहीं पे भी हेल्प नहीं करने वाला। आप ये भी देखते हो कि रील्स के अलावा अगर पढ़ाई की कोई भी चीज देख रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसको दो टीचर दो तरीके से समझाएंगे, दोनों तरीके अगर अलग तरीके दोनों सही हो सकते हैं, बट वो थोड़े अलग हुए तो बच्चे को कंफ्यूज कर देंगे। तो पढ़ाई के रिस्पेक्ट में मोबाइल लेना भी सही नहीं है अगर उस ऐसे देखे तो सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में मोबाइल से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आपने सही तरीके से जो है वो सोशल मीडिया को लेकर बच्चों को सही जानकारी दी। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा, जितने बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जेई एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई खास बात आपकी तरफ से?
0: बस एक ही खास बात है कि चुपचाप पढ़ते रहो, मेंस में अच्छे आ जाए खराब आ जाए, उनमें ना उड़ना है ना यूं बैठ जाना है। और लास्ट मोमेंट तक, जैसे हमारे आज 17 मई को एग्जाम था इस साल, तो 17 मई के शाम की 5:30 ना बज जाए तब तक बस लगे रहो।
1: मतलब जो जोश आपकी आवाज में और जो स्लैंग जिस तरीके से बता रहे हो, आपका जोश बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और इस बातचीत से जो बच्चे स्पेशली जो जेई एडवांस है और नीट की परीक्षा की तैयारी वाले जो सुन रहे हैं, वो वाकई जो है आपसे आपकी इस बात से जरूर इम्प्रेस हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य सारण, रैंक 117।
2: श्रोताओं, भी आपने सुनी फोन आउट भेंट वार्ता। आदित्य सारण जेईई एडवांस 2026 117 रैंक प्राप्त से राहुल की बातचीत। इसकी प्रस्तुति थी राजेश लामरूड की। और राहुल आज जो है युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है।

की। और राहुल आज जो है युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है और आदित्य ने भी अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। तो चलिए सबसे पहले इनकी फरमाइश को सुनते हैं और फिर इस गाने के बाद ऑनली ऑन एफएम 102.1 पे नितेश और राहुल आपकी फरमाइश का भी वेट करें। तो जल्दी से जल्दी हमें मेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल राहुल, और तो इससे एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है, आरसीबी कहती है कि हार मत मानो, और वैभव कहता है भाई उम्र नहीं हुनर मायने रखता
1: अब
0: है।
1: बात चले क्रिकेट की बातों का, तो थोड़ी देर तक यहीं पवेलियन भेज देते हैं इनको और बढ़ते हैं आपकी अगली फरमाइश की तरफ। और ये शानदार सी फरमाइश किन्होंने भेजी बता दीजिए नाम इनके।
0: राहुल, पद्मापुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा।
1: साथ ही साथ गांव ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भी फरमाइश आई है, जो कि है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की तरफ से। साथ ही साथ एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम काकड़ा, बबीता बोट, निखिल काकड़ा, तन्वी बोट। और वहीं साथ ही साथ रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं हमारे पास, इनकी फरमाइश है दिनेश वर्मा है, करुणा वर्मा है।
0: और वही साथ ही साथ जोधपुर से हैं दीपक पवार।
1: पटेल नगर मलोड से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गंदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू और इनकी पूरे परिवार वालों की तरफ से फरमाइश आई है। तो आप और मिलकर एंजॉय करते बिना किसी देरी के इनकी फरमाइश को, म्यूजिकल ट्रैक।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: वेलकम बैक जी आपका दोस्तों एक बार फिर से। जैसे कि आप सभी को और हम सभी को पता है IPL 2026 खत्म हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी इसकी बातचीत के चौके और छक्के चल ही रहे हैं साहब।
1: और एक तरफ RCB ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर अपने फैंस को एक ऐसा सरप्राइज दिया है कि कई लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है भाई ये सपना है या फिर हकीकत।
0: बिल्कुल सही कहा, यकीन नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ हो रही है, 15 साल की वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने इस बार राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए ऐसा खेल दिखाया है कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी सोच रहे भाई हम 15 की उम्र में होमवर्क नहीं कर पा रहे थे और भाई साहब तो मतलब अवार्ड पे अवार्ड जीते जा रहे हो, बात क्या है।

0: दोस्तों, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? वो वक्त आने पर जरूर बदलती है।
1: राहुल, आज प्रोग्राम में ये डायलॉग कैसे आ रहे भाई? और वो भी यार माधवन का।
0: दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ अपने किरदार नहीं निभाते बल्कि उन्हें जीते हैं, और ऐसे ही एक शानदार अभिनेता हैं आर माधवन, जिन्होंने अपनी सादगी, अभिनय और व्यक्तित्व से कई, मतलब बहुत सारे, यानी लाखों दिलों में जगह बनाई है।
1: बिल्कुल सही कहा। और फिल्म थ्री इडियट में निभाया गया फरहान का किरदार और उसका मशहूर डायलॉग अब्बा नहीं मानेंगे आज भी लोगों की जुबान पर है। दिलचस्प बात यह है कि इस किरदार की भावनाएं माधव की असल जिंदगी से भी काफी मिलती जुलती थी।
0: शायद यही वजह है कि उनका अभिनय इतना सच्चा और दिल को छू लेने वाला है, दिल को छू लेने वाला है। और इनकी फिल्मों की मैं बात करूँ तो रहना है तेरे दिल में, तेनू बेट्स मनू, थ्री इडियट्स, रॉकेट्री, द नंबी फैक्ट, धुरंधर और ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने बेहतरीन रोल किया है, और इसके जरिए वो हर बार अपने अभिनय में एक नया रंग दिखाते हैं।
1: और बिल्कुल, और इसी रंग के चलते उन्हें रॉकेट्री फिल्म के लिए 2022 में नेशनल फिल्म अवार्ड और 2026 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया।
0: और आज ये बेहतरीन कलाकार अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो आइए आकाशवाणी और युवाणी और हम सभी श्रोताओं की ओर से आर माधवन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें और आने वाले वर्षों में भी अपनी शानदार अदाकारी से हमारा मनोरंजन करते रहें। और फिलहाल प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, युवा पसंद फरमाइश है, फरमाइशों का पिटारा खुला हुआ है। अगली फरमाइश।
1: बिल्कुल राहुल, जो अगली फरमाइश आई है, जो हमारे फरमाइश करता है वो लिख कर भेजते हैं कि प्रोग्राम पेश करता को प्यार भरा नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। और उन्होंने लिखा है, कलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र सांधु, अनीता सांधु, रोहित सांधु, रितेश सांधु, शिका सांधु, प्रतीक्षा सांधु और मैक्स।
0: साथ ही साथ आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं ये उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अरिजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल की तरफ से। साथ ही साथ धमदा ग्राम सुखरी कलना से है अमित जंघेल,

0: शंकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल की तरफ से।
1: और वही साथ ही साथ तहसील सिंह धरी से नाग सिंह राजपुरोहित, तनवीर पुरोहित, गजेंद्र पुरोहित की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
0: मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन, कविता, करुण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई की तरफ से। साथ ही साथ बहुत सारी फरमाइश जो है, अगर आप भी हमारे साथ हमें और हमारे मेल एड्रेस पर फरमाइश भेजना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल भेज सकते हैं, yuvapasand@gmail.com, और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9413329359। जो बिल्कुल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9413329359। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है हमें अपनी फरमाइश का कोई भी गीत लिख कर भेजें और हम सुनाएंगे आपको आप ही के पसंद के गाने। इनकी फरमाइश का फिलहाल ही गाना सुन लेते हैं।

0: वेलकम बैक जी, एक बार फिर से शानदार बेहतरीन सी गज़ल के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम अवार्ड में ये पसंद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: जी हाँ, मैं हूँ आप लोगों के साथ आपका रेडियो दोस्त नीतीश। और जो अगली फरमाइश करता है वो है अब्दुल हमीद, रईसा बानो, अब्दुल मुसविर, आयशा बानो और अब्दुल अहद, फिज़ा बानो। ये है जोधपुर से। और

0: अगली
1: और
0: फरमाइश आई है बिल्कुल पार्थ, रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से है। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और अगली फरमाइश जो है साथ ही साथ आई है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह की
1: और
0: तरफ
1: वही
0: से।
1: राहुल, साथ ही साथ गांव मेलाना तहसील बावड़ी जिला जोधपुर से छैला राम, रविंद्र, देवेंद्र, अनीता और फूली देवी।
0: साथ ही साथ ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से फरमाइश आई है श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से।
1: और वही साथ ही साथ जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी।
0: सदर बराज कोरावाली से है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनल वर्मा और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से। आइए आप और मिलकर इनकी जो है फरमाइश का ये वाला बेहतरीन सा गाना एंजॉय करेंगे आप। बिल्कुल।

0: जी बिल्कुल, देखते देखते आज की शाम, आज की महफिल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। आपके भेजे हुए संदेश, प्यार भरे और आपकी फरमाइशों और गीतों के साथ गुजरा 1 घंटा सचमुच याद कर रहा। दिल से शुक्रिया, और आपने अपनी शाम का हमें हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।
1: और चलते चलते कुछ पंक्तियां अर्ज है कि वक्त की रफ्तार में लम्हे गुजर जाते हैं, कुछ चेहरे और कुछ रिश्ते हैं वो दिल में उतर जाते हैं। मुलाकातें भले रोज ना हो हमारी, मगर कुछ लोग यादों में हमेशा ठहर जाते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है। और एक बात हमेशा याद रखना, दूरी चाहे कितनी भी हो, रिश्ते आवाज़ों से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ लोग सामने नहीं होते फिर भी दिल में बहुत करीब होते हैं।
1: इन्हीं भावनाओं के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नितेश, और ले रहा हूं आपसे विदा। अपना अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी के हर पल को खुलकर जीते रहिए। मिलेंगे फिर कल इसी समय इसी स्टेशन पर, नई बातें नई गीतों और ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ। और कल है यूथ अंताक्षरी, तो गानों की प्रैक्टिस कीजिए और आज की शाम मेरे साथ हैं।
0: इस आवाज़ का नाम राहुल, और आज के कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुति रही राजेश लामरोड। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: आपने सुना युवा साथियों को समर्पित कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध

व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable, and prosperous Indo-Pacific. During the second India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi, Defence Minister Rajnath Singh and his Australian counterpart Richard Marles stressed the importance of freedom of navigation and overflight, unimpeded trade, and lawful use of the seas in accordance with the international law. The Supreme Court today refused to entertain a plea seeking that the NEET UG 2026 retest be conducted in computer-based test mode instead of the existing pen and paper format. A bench of Justices P.S. Narasimha and Arvind Kumar said the National Testing Agency is already facing multiple challenges after the cancellation of the examination. The court posted the matter for hearing on the 27th of next month. The Trinamool Congress TMC has expelled two legislators, Sandeepan Saha and Ritbrata Banerjee, for anti-party activities, absenteeism from key meetings and public remarks critical of the party leadership. The move comes amid internal turmoil following TMC's defeat in the 2026 West Bengal Assembly elections. The last rites of veteran playback singer Suman Kalyanpur were performed with full state honours in Mumbai today. Kalyanpur passed away at her residence in Mumbai last night. She was 89. One of India's most celebrated singers, she was a prominent figure in Marathi Bhavgeet and Hindi film music. Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar expressed grief and paid tribute to the legendary singer. And that is the end of this news bulletin.
1: जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको अवगत कराते हैं आज की सभा के शेष रहे और कल की सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय से। सर्वप्रथम आपको जानकारी दे देते हैं समाचारों के बारे में। संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे संध्या 6:20 पर। रात्रि 8:45 पर रिले किए जाते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे समाचारों का बुलेटिन हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:30 पर। 6:42 पर रिले होगी जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से शाम 6:47 पर। खेल जगत कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:00 जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। देशगान का समय रहेगा 6:15 शाम 7:00 का समय रहता है हमारे नियमित कार्यक्रम चौपाल का। शाम 7:30 पर आप सुना करते हैं सीमा डेरी गूंज ये कार्यक्रम। आज की सभा में आप फिल्म संगीत सुन पाएंगे रात्रि 8:00 रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10:30 पर। सुगम संगीत का आनंद उठाइएगा रात्रि 9:15 पर। ये थे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आइए अब आपको अवगत करा देते हैं कल यानी 2 जून 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी से।

श्री रामचरितमानस का अनुप्रसारण समय रहता है सुबह 6:05। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आप सुना करते हैं 6:15 पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का समय रहता है सुबह 7:00।

ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देश गान।

0: आपने सुना देशगान। जी, आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोता, संध्या के 6:20 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित संस्कृत में समाचार, और उसके पश्चात आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, शाम 6:42 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, म्यांमायाः राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन च नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। अनेन भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने 98% विपणौ शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षपूर्तौ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अनया योजनया पथव्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनावसराः प्रदत्ताः। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं विधाय 35 नूतन मंत्रिभ्यः मंत्रिमंडले स्थानम् अयच्छत्। अपि च हांगकांग नगरे आयोजितायां 22वीं एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि विजितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, म्यांमायाः राष्ट्रपतिः ऊ मिन आउं लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमा भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयम्

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की आज से शुरुआत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रमासिया गांव से इसका शुभारंभ किया। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना और पंचायत स्तर पर जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें दोगुनी हो गई हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने तय किया है कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड से वंचित किसानों के कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग बढ़ाना होगा। सही बुआई, रोग से बचाव और कम बारिश की संभावना को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके अपनाना समय की जरूरत है।
1: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, निकाल के देखा कितना जिंक, कितना पोटास, कितना बोरान, और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उतना ही डाला, तो पैसा भी बचेंगे, धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहाँ सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे, और एक बैलेंस खाद का उपयोग, वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना।

0: पड़ेगा।
1: 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज जल से संबंधित उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन

0: क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन माहा का शुभारंभ किया। ये जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और जल उपयोग दक्षता जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दोनों मंत्रियों ने नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में इस मिशन की शुरूआत की। कार्यशाला में जल संकट के समाधानों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए उपग्रह आधारित अनुप्रयोगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें 24 प्राथमिकता वाले अध्ययन और सहयोग के क्षेत्र पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं। राजस्थान सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हुई। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इनकी जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून को अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता होने पर 18 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य निर्वाचित होने हैं। भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2020 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इस पहल के जरिए 75 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है, जिसने लाखों परिवारों को विश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया आधार दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों, आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र साहू ने आज बालोतरा जिले का दौरा कर अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी जानी। श्री साहू ने बालोतरा थाने का निरीक्षण कर सीएलजी सदस्यों से फीडबैक लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यक संसाधनों की कमी को पूरा किया जाएगा। श्री साहू ने कहा कि नए पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के बाद तैनाती कर नफरी की कमी को दूर किया जाएगा।
1: देखिए, पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षणाधीन। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, एक साथ इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी वो तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस मुख्यालय का ध्यान है, वो उपलब्ध करा दी। तो आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि होगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य सरकार की नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने और सफलता की कहानियां तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माय भारत और राज उन्नति जैसी सरकार की पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों के रूप में पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों ने इन पहलों के कार्यान्वयन में रुचि भी दिखाई है। बैठक के दौरान प्रदेश में खनिज अन्वेषण, नीलामी प्रक्रिया, पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई परियोजनाएं और ऊर्जा क्षेत्र सुधारों से जुड़े विषयों के संबंध में भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आज प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने को कहा। मुख्य सचिव ने योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए पीएम पोषण योजना के पोर्टल को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिये। झुंझुनू जिले

0: के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने 13 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉ अरुण गर्ग ने भवन निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन किया। ये केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं वाला होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर श्री भांबू ने कहा कि मंत्रालय ने राजस्थान के 7 डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, जिनमें झुंझुनू भी शामिल है। प्रदेश में मध्य और पूर्वी जिलों में आज भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर में बादल छाए हुए हैं और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश हो रही है। अलवर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा और सीकर जिलों में भी तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की बारिश तो कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। पाली में तेज हवाओं से कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। करौली में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज हुई ओलावृष्टि से कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा है।
1: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे, जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में भी तेज आंधी के साथ कहीं कहीं ओले गिरे। इसके अलावा बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के समाचार हैं। राज्य में पिछले 3 दिन से जारी आंधी और बारिश के चलते ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे, वहीं रात का पारा 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर ने कहा है कि अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। 3-4 जून को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश के आसार हैं। झुंझुनू में 17वीं बटालियन जाट रेजिमेंट का 60वां स्थापना दिवस समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में पूर्व सैनिकों, सैनिक परिवारों और वर्तमान सैनिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ अरुण गर्ग ने सैनिकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा भी की। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले साल मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की बढ़ोतरी हुई, वहीं सेवा क्षेत्र में 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में आधुनिक तकनीक, मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों की द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, प्रदेश की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा राजस्थान के नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने इन नवाचारों का प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और ओले गिरने से नुकसान के समाचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख संदीप केडिया ने तैयार किया है। झुंझुनू जोन में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 23,000 से ज्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। बिजली की मांग बढ़ने और सरकार की ओर से सब्सिडी बढ़ाए जाने के बाद छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के काम में काफी तेजी आई है। जिले में रोजाना 70 से 80 आवेदक सोलर सिस्टम लगाने के लिए मिल रहे हैं। गांव और कस्बों में शिविर लगाकर लोगों को सोलर सिस्टम के फायदे बताए गए। इसके बाद लोगों में सोलर पैनल लगवाने के लिए रुचि जागी है। डिस्कॉम के एसई महेश टीबड़ा ने बताया कि जोन के 23,000 सोलर सिस्टम से 86,000 किलोवाट से ज्यादा बिजली

0: उत्पादन हो रहा है। इससे डिस्कॉम को कई गांवों और ढाणियों तक बिजली सप्लाई में मदद मिली है। आमतौर पर पराली को किसानों और पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या माना जाता है, किंतु जिले में पराली से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन हो रहा है। इसके लिए मंडरेला रोड पर आधुनिक बायोमास पावर प्लांट लगाया गया है। इससे बिजली जरूरतें भी पूरी हो रही है, साथ ही प्रदूषण भी कम हो रहा है। इस संयंत्र से हर महीने 1 करोड़ से अधिक यूनिट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है, जिससे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कृषि कचरे को उपयोगी संसाधन में बदला गया है। साथ ही स्थानीय किसानों को भी अपने कृषि अपशिष्ट पराली का सही निस्तारण करने का जरिया मिल गया है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। इसके जरिए पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जा रही है। गंगा दशमी के अवसर पर बगड़ कस्बे के फतेह सागर तालाब से जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा, पीपल पूजन, सरोवर पूजन और श्रमदान के कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों ने जल बचाने और स्वच्छता बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने इस मौके पर कहा कि जल संरक्षण में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामूहिक भागीदारी के साथ जल संरक्षण के प्रयास करने पर पानी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई रखी गई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस जनसुनवाई में जिले भर से परिवादी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मामलों के शीघ्र निस्तारण करने को कहा। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाने पीने की चीजों के नमूने लिए गए। इनमें गड़बड़ियां सामने आने पर 2 दुकानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही मिलावटी चीजों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। उन्होंने बताया कि विभाग को मिलावट की जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा पिछले दिनों राज्य नोडल अधिकारी डॉ एसएन धोलपुरिया ने की। उन्होंने सीएमएचओ कार्यालय में बैठकर अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान डॉ धोलपुरिया ने झुंझुनू जिले के 236 उच्च जोखिम वाले गांवों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। झुंझुनू जिला उपभोक्ता आयोग ने नई शुरुआत की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि अब उपभोक्ता और सेवा प्रदाता को सीधा पोस्टकार्ड भेजा जाएगा, जिसके जरिए दोनों पक्षों को मुकदमे की वास्तविक स्थिति बताई जाएगी। साथ ही आपसी समझाइश से मामले को निपटाने का मौका दिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से हो रही प्राध्यापक कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए जिले में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 31 मई से 5 जून तक चलने वाले इन परीक्षाओं में 56,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस बार मानसून में जिले में 33 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झुंझुनू जिले के पंचगौरव में शामिल नीम के पौधों को इस मुहिम में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार वन विभाग ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। झुंझुनू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी माए नूवी तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवण माथे जोर दिनो। 10 राज्यां माए राज्यसभारी 24 सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश माए 3 सीटां सारू चुनाव फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामा री देश माए सराहना भी। और प्रदेश का कई जिला माए आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़बाऊ नुकसान रा समाचार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरबे समाचार विगतवार। देश माए आज खेत बचाओ अभियान शुरू करीचियो। केंद्रीय

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश रा रायसेन जिला रा रमासिया गांव इनरी सर्वात किन्नी ई मौके वे कहो कि दुनिया भर में खाद रो मोल दुणो भेवण पाछे केंद्र सरकार किसाना ने सस्ती खाद मुहैया कराउण ते किन्नो है। कृषि मंत्री कहो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड नी बना सक्या किसाना सारू खास अभियान चलार ए कार्ड बनाया जावेला। वे कहो कि अब खेती माए सही बुआई बीमारियां बचाव और कम बिरखारी संभावना न ध्यान रखता था का वैज्ञानिक तरीका काम लेना फैला।
1: मिट्टी के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे, निकाल के देखा कितना जिंक कितना पोटास कितना बोरान और उस हिसाब से खाद का हिसाब लगाया और उत्तर डाला तो पैसा भी बचेंगे धरती मैया भी बचेगी। एक तो ये करेंगे, दूसरे उन्नत खेती करना। अभी अपन ने कृषि मेला किया था जहाँ सब किसान देखेंगे और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है उसकी कोशिश करेंगे। सोयाबीन कैसे लगाना है, सोयाबीन कैसे बोए उसकी ट्रेनिंग दे और एक बैलेंस खाद का उपयोग वो हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा बताना पड़ेगा।
0: 30 जून तक चलने वाला ई अभियान रातेत किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरीखी योजना वारो फायदो पात्र किसाना ताई पुगावन रा खास जतन करिया चावेला। ई अभियान रो मकसद खाद ने संतुलित तरीकों काम लेवन ने बढ़ावो देवणो किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारी टेम सर देवणो और पंचायत लेवल माथा जनता री भागीदारी तय करनो है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज पानी जुड़िया हलका माए बेहतरी सारू मिशन महा रिसर्वात किन्नी। वे नई दिल्ली माए जल अनुसंधान और विकास रवारा माए राखी जी राष्ट्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन कार्यक्रम माए इन रिसर्वात किन्नी। इनरो मकसद पीवन रा पानी और जल संसाधन प्रबंधन आबो हवा माए बदलाव रो सामोकरण रो बूतो और पानी ने समझदारी काम लेवन सरीखा हलका माए नूवी खोज ने बधावो देवणो है। कार्यशाला माए पानी री परेशानी आगीकरण रा तरीका रा बारा माए विचार करियो चाट्यो है। ई मौके जल शक्ति मंत्रालय और इसरो जल संसाधन आकलन निगरानी और प्रबंधन सारू उपग्रह आधारित अनुप्रयोग और उन्नत प्रौद्योगिकियां ने मजबूत बनावन सारू एक करार माथे सही कीनी। राजस्थान समेत 10 राज्यों में राज्यसभा री 24 सीटों रा द्विवार्षिक चुनावी अधिसूचना आज जारी करती रिची। इंसागे पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू फेंक्यो है। प्रदेश राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करो जावनो है। इंसारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करया जा सके है। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के पर्चा विधानसभा भवन रा कमरा नंबर 106 माए चुनाव अधिकारी सामी सवारे 11 दोपहर 5:30 बजे ताई दाखिल करया जा सके है। नाम पानारी जांच 9 जून न करी चावेला। पर्चा 11 जून न दोपहर 5:30 बजे ताई पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून न वोट पड़ेला और सिंजा 5 बजे पाछे वोटां री गिनती करी चावेला। ध्यान जोग है कि राजस्थान नु राज्यसभा सदस्य भाजपा रा रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस रा नीरज डांगी रो कार्यकाल 21 जून न पूरो फेरियो है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरूविया आज 6 बरस पूरा फेंक्या। साल 2020 माए आज हीरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनरी शुरुआत कीनी ही। इनरो मकसद रेहड़ी पटरी वाला ने आसान कर्ज मुहैया करावनो है। योजना रे जरिए हाल ताई 75 लाख बत्ता लोगों ने 17,800 करोड़ रुपया रा कर्ज दिया चिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माए भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सागे मुलाकात कीनी। ई मौके दोनों नेता जनता रा भलाऊं जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा और आवती कार्य योजनावां रा बारा माए चर्चा कीनी। पुलिस महकमा माए मकान रहवास रो काम देख रहा एडीजी भूपेंद्र साहू बालोतरा जिला माए अपराध और कानून व्यवस्था रा हालात रो जायजो लीनो। वे पुलिस वाला सागे मीटिंग कर वारी समस्यावां री जानकारी लीनी। श्री साहू बालोतरा पुलिस थाना रो दौरो कर सीएलजी सदस्यों जानकारी लीनी।

0: ای موقع خبر نویسان سگے بات چیت کرتا تھا کام و کہو کہ ضلع مائیں ضروری سادھنا ری پورتی بیگی کری چاویلا اے ڈی جی کہو کہ پولیس لائن سارو زمین آونٹن ری کاروائی کر دی ریچی ہے شری ساہو کہو کہ پولیس مائیں نوا بھرتی ویا کرمچاریاں ری سکھاون پچھے تیناتی کیرر نفری ری کمی دور کری چاویلا
1: देखिए पुलिस की नफरी नया जिला बना तो पुराने जिले से इनको एक आवंटित की गई है। इसके अलावा जो नए रिक्रूट्स हैं अराउंड 179 वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रशिक्षणाधीन। मेरे ख्याल से आने वाले नवंबर दिसंबर तक 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जिला को उपलब्ध हो जाएंगे। तो देखिए एक साथ ही इतनी सारी नफरी आ गई। इसके अलावा जो आगामी वर्षों में जो भर्तियां होंगी तो समय समय पे पूरा सरकार का ध्यान है, पुलिस मुख्यालय का ध्यान है, वो उपलब्ध करा दी। आने वाले समय में जनसंख्या पुलिस का अनुपात है वो एक विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी बनाया गया, आने वाले समय में नेचुरली इसमें वृद्धि
0: होगी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राज्य सरकार का न्यू कराया जा रहा नुआ नुआ कामारी कामयाबी री कहानियां तैयार करन रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। मुख्य सचिव कहो कि प्रदेश माए ग्राम विकास चौपाल, ग्राम रथ अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान, चंदन वन, माई भारत और राज उन्नति सरीखी सरकारी कोशिशा ने देश भर माए बेहतरीन कोशिशा रा तौरों पिछाण मिली है। मीटिंग माए प्रदेश माए खनिजा री खोज, नीलामी प्रक्रिया, पीवण रा पानी री उपलब्धता, साफ सफाई, पाना तून जुड़ी परियोजनावां और ऊर्जा हलका माए सुधारां रा बारा माए चर्चा करी जी। मुख्य सचिव प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रा कामकाज रोई जायजो लीनो। वे राज्य री स्कूलां माए विद्यार्थियां ने पौष्टिक भोजन मुहैया करावण सारू अहलकारां रे लगातार जांच रा हुकम तीना। झुंझुनू जिला रा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनायो जावेला। इन सारू शिक्षा मंत्रालय 13 करोड़ रुपया मंजूर कीना है। विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉ अरुण गर्ग इरा काम रो आज भूमि पूजन कीनो। इ मौके विधायक भांबू कहो के मंत्रालय झुंझुनू समेत राज्य रा 7 डाइट परिसर माए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनावन रो फैसलो कीनो है। झुंझुनू माए जाट रेजिमेंट री 17वीं बटालियन रो 60वां स्थापना दिवस समारोह उमाव सागे मनाई चियो। कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर डॉ अरुण गर्ग फौजियां सामी आवण वाली चुनौतियां अरवारा निपटारा रा बारा माए चर्चा कीनी। कार्यक्रम माए पहली वाला अर मौजूदा फौजी अर फौजियां रा परिवार वाला शामिल फिया। अरब मौसम प्रदेश रा बीचला और उगनी जिला माए आज ही आंधी बारिश रो सिलसिलो चालतो रहो। राजधानी जयपुर माए सिंजानी पोर बादला मंड गया और कुछ हल्का माए छांटो छिड़को भियो। अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और सीकर जिला माए जोरदार बायरो बजन सागे, कठे कठे हल्की बारिश हुई तो कठे कठे उड़ा पड़िया। पाली माए बाजा जबरदस्त बायरा रे कारण कई रूखड़ा उखड़ गया और बिजली रा खंभा पड़ गया। करौली माए दोपहर पाछे बिरखा हुई जिन्हों गर्मियों थोड़ी साता मिली। दूजगानी नागौर माए ओला पड़माऊ कपास री साख और सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना ने नुकसान फियो।
2: नागौर जिले में आज दोपहर में हुई बारिश से ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचा है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर करीब 1 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में बारिश के साथ के ओले गिरने लगे जिससे हाल ही बोई गई कपास की फसल नष्ट हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्याम लाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: चित्तौड़गढ़ में आई तेज आंधी अवन सागर कठे कठे ओला पड़िया। बूंदी, भीलवाड़ा और राजसमंद समेत कुछ जिला माए जोरदार बायरो बाजन सागे छांटो छिड़को विवण रा समाचार है। राजरा घनखर हलका माए लारला 3 दिनों चाल रहा आंधी और बारिश रा सिलसिलाऊ दिन री बगत पारो 40 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो जबकि रात री बगत ही तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर दर्ज करियो जा रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 1 सप्ताह ताई प्रदेश

0: में आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है। 3-4 जून ने बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माए आंधी बारिश माए ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी री मदमाए लारला महीना 1,94,000 करोड़ रुपयों बत्ती रकम भेड़ी करी ची। लारला साल मई महीना माए आ रकम 1,88,000 करोड़ रुपया ही। इन अवधि रे दौरान सामान री कर योग्य पूर्ति माए 26.9% जदकै सेवा हल्का माए 22.2% री बढ़ोतरी दर्ज करी ची। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतो सीईपीए आज लागू हो गयो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बतायो कि इन करार दोनों देशों में माली और रणनीतिक रिश्ता और मजबूत बनेला। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती बाड़ी में नई तकनीक मशीना और वैज्ञानिक तरीका काम लेवन माथे जोर दिनो। 10 राज्यों में राज्यसभा 24 सीटों रा द्विवार्षिक चुनाव री अधिसूचना जारी। प्रदेश में 3 सीटों सारू चुनाव भेला। मुख्य सचिव वे श्रीनिवास कहो राजस्थान रा नुआ कामारी देश में सराहना भी। और प्रदेश रा कई जिला में आंधी बारिश रो सिलसिलो जारी। कठे कठे जोरदार बायरो बाजन और ओला पड़वाऊ नुकसान रा समाचार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार
1: जी। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल

गांव ग्वार अर खेत खलियानरी बात मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

लोसा हाजिर है राजस्थानी गीतार और फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत हर सोमवार सिंजिया 7 बजिया आप सुन सको हो आपरो पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। चिरमी कार्यक्रम सुनना सगला हेतड़ श्रोता ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

तनी लूक गीता अर लूक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। ओ ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड से भेजन वाला है दिनेश सोडा, रुद्राक्ष सोडा, भव्यांश, रमनदीप और राम किशोर। गांव नारवा इंद्रो का सुन नरपत लाल, सोनी, शिवम और वैशाली। खुड़ेचा बिपाड़ शहर सु माने कागज लिखे है हीरा लाल श्रीमाली, जिज्ञा देवी श्रीमाली, सीमा, खुशी, विशाल, मन्नत, सुनील, किशोर, ओम प्रकाश श्रीमाली और आनो सगड़ो परिवार। गांव खींदा सर सु ईमेल भेजियो है कानाराम चौहान, सुखाराम, श्याम सुंदर, तपस्या चौहान और आना घना सारा साथी। गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आना साथी। फलोदी सु ईमेल भेजियो है सुभाष लेखावत। और कागज आयो है नागपुर सु शैलेश वैशाली, सुमित ग्वाणकर, ध्वनि और आना सगला घरवाड़ा। सुंदरखेड़ बुलढाणा महाराष्ट्र सु कागद लिखियो है नरेंद्र नरवाड़े। और कागद लिखियो है धर्मेंद्र पांचाल, मोहनलाल पांचाल, अर्जुन पांचाल, अशोक, पुष्पेंद्र, रजनी, प्रियंका, हरीश, कैलाश और विक्रम पांचाल। और कागद आयो है गांव चैनपुरा तहसील धोरीमीना बाड़मेर सु जगदीश भारती, विजेश भारती, नरेश भारती और मलिता गोस्वामी रो। गांव नाथुसर सु कागद लिखे भंवरलाल बारूपाल। और कागद आयो है गांव फिटकासनी सु लिखियो है गोविंद बाबल, भागीरथ बाबल, काजोल, मालाराम बाबल, हरिराम, संग्राम राम बाबल, अठे सुई हुक्माराम सिंवर, विष्णु सिंवर और आना सगला साथी। और कागद आयो है इंदिरा कॉलोनी मां मंदिर सु श्याम डागर, राजेंद्र, गोपाल मरिठा, रमेश सांखला, जीतू बाडुलिया, नंदू भाई, वगलू राम गहलोत और आना घना सारा साथी। तो लो सा हाजिर है आप सवारी पसंद माते आ रचना।

0: राजस्थानी लोक गीता और भजनारे इन फरमाइशी कार्यक्रम में आप रे साथ है, आप रो साथी गुरविंदर विश्नोई तैयार है आपरा लिखोड़ा कागज ले और ईमेल माने कने आयो है अनारकली बाजार पंजाब सु लिखियो है सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष बेबी गव्या और जयपाल यादव गांव धुंधाड़ा सु गणेश मेघवाल चंपा मेघवाल मधुबाला विवेक और आना सगड़ा साथी आगलो कागद है गांव छापला सु मांगीलाल सीताराम सुरेंद्र कुमार खुशबू और विद्या देवी रो और कागद माने कने आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची बदवासिया सु कृष्ण राम सांसी पप्पू राम सांसी कंवर राम सांसी और विनोद सांसी बदवासिया सु पारसमल खटनवालिया अशोक खटनवालिया जयराम और आना सगला साथी खारड़ा भारत सिंह सु खरता राम माचरा भैरा राम रेखा राम माचरा उम्मीदा राम चेतन भोम सिंह और आना सगला साथी और कागद आयो है फाजिलका सु लिखियो है भूषण विशाल शालीन खेड़ा आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार कागद आयो है मलोट कैंप पंजाब सु सतीश मिगलानी सीमा शाइना विशाल मिगलानी सुप्रिया अनमोल धर्मपाल महावीर और रमेश मिगलानी रो मलोट कैंप पंजाब सु ही माने एक और कागद मिलियो है रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया रो
1: और कागद आयो है धोबी घाट इंदिरा कॉलोनी जोधपुर सु लिखन आला है नंद किशोर बारिया नंदू धनवंती कालू सुमन चांदनी और आनो सगलो परिवार
2: गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्या सीता देवी मौर्या विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्या खिमसर नागौर सु कल्याणमल प्रभु राम वंशीलाल हेमा राम शोभा राम मौर्या और आना सगला साथी
0: और ईमेल आयो है गोपाल राम सुथार मुकेश सुथार कमला देवी नीमा देवी विमला देवी अर्चना दामोदर किशन प्रमोद और आना सगला घरवाला और ईमेल आयो है नीमा राम सारण राम स्वरूप सुरेश गोपाल विकास सारण और आना साथियारो आगोलाई जोधपुर सु गांव मेलाना सु छेलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी मेघवाल
3: तो लो सा हाजिर है आप सवारी पसंद माते आ रचना

कालो घोड़ो रे कांटुओ भमर भालो हाथ। अरे इतना बढ़िया वो तो देखियो मजे जेठुआ तनी जात। जेठा घड़ी न जात जेठा दी जेठा घड़ी न जाय मारो जमारो किस्मत जीव से। अरे हूं बिलकतड़ी नार दे माने जोगण कर गयो जेठुओ। अरे डोडा हमत पी

तनी लूक गीता अर लूक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई राजापुर मध्य प्रदेश सु माने ईमेल भेजियो है मनमोहन राजावत मधु राजावत राशि अर रक्षित ओ कागज आयो है गांव गंगाणी सु जगदीश भाट आलम पड़ियार भिया राम किशन चुकी देवी और कौशल्या आगलो कागज आयो है गांव गुड़ा विष्णुयान सु लिखियो है जवरी लाल बेरवाल फगलू राम मांझू छोगा राम बेरवाल।

पाल, भानाराम बीरवाल, जेताराम, विष्णु, अनूप, सोहनी, ममता, सरिता, दिव्यांशी, दीपू, चीकू, किट्टू और अणा सगला घर वाला और कागज आयो है रुड़कुली सु लिखियो है अनिल सिंवर और अणा साथी गांव कुड़ी सु ठाकुर रूप सिंह कुंवर दिग्विजय सिंह मंजू कंवर सोडा मुमल कंवर और अन्नपूर्णा कंवर आप सबरी फरमाइश माते सुनो आ रचना

मेल भेजी है राम सिंह देवासी और थाना राम देवासी, व्यास कॉलोनी एयरफोर्स हूँ, चुन्नी देवी मेघवाल, बिंदु मेघवाल, कार्तिक हिमांशु, विनोद मेघवाल और आणा घराड़ा, आऊ फड़ोदी सू माने कागज लिखे बिकम चंद टाटिया, संतोष टाटिया, मनोज, सुरेश, खुशबू, सपना, धनी और भूमि, मथानिया सू भगराज वर्मा, बेबी वर्मा, हनुमान, मदन और गोविंद सुथार, बिरे सू रतना राम उदेणिया, मेहराम उदेणिया, गुलाब राम और आणो सगलो परिवार, रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और आणा घराला माने ईमेल भेजो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सु। और ईमेल आयो है श्री राम जानी, भीका राम जानी, धर्माराम जानी, मोडा राम जानी, गर्वित अनुष्का, भावना और आणा साथी गांव थोब। तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना।

साथियां ओहो मानो आज रो फरमाइशी कार्यक्रम अबे कार्यक्रम रो टाइम हो रियो है पूरो तो आपरे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दी रहो नमस्कार।

0: सौंधी माटी री महक, खेत खलियान री खुशबू, गांव गवार री बातां बातां जकी आपने गांव सु जुड़ियोड़ी है, बातां जकी आपा सु जुड़ियोड़ी है, बातां जकी आपने जीवन सु जुड़ियोड़ी है, आपना टाबरा सु जुड़ियोड़ी है, अर गांव रे विकास सु जुड़ियोड़ी है। सगली बातां एक साथ, अर कार्यक्रम है चौपाल, सिंजिया 7 बजिया, सुनो न भूलो आपरो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।
1: आपने सुना कार्यक्रम चौपाल, जी आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: पट गोडाली में और कौन है?
1: आओ नवल भाई, आओ
0: नवल भाई, कमरे में आओ।
1: कोई सामान है वो लाने में थोड़ा
0: वाला है। सामान लाइए नी बाकी को लाइट बड़ी है आवरी भाई मैं आवरी ठाकुरी ये क्या नी पांडो करना ही तो गेटी बे भाई कौन नेरी आता ओळखी कोनी है
1: है नवल भाई मन ओळखोनी रोज रोज अरे
0: मारे पांत्रो पड़ जा भाई कई दिन ओडाडा आवडाडा आओ जाओगे
1: हां
0: तो मैं क्या नी थे हो घणा हूं रहगो एकलो तो मैं मगज में कहू है मारे वो कह नी बुद्धि आलो नारियल थोड़ो हुक ढूको
1: तो पानी देओ महीने पानी
0: दिया दिया दिया कौन शीला
1: हाँ नवल
0: भाई भाई एटी बेले पानी पी ले और कहू लाई है सामान कर लो लाई आज तो कह नी एकदम बोरु पर लाई
1: नवल भाई मैं मेले में गई होती काल सामरा जन उठो यानी मैं एक तो नहीं उठे एक दुकान होती नवलबा खोलोड़ी उनमें पीतल घना हारा यानी बर्तन होता जन एक तो मैं नवलबा थोर लाई पीतल री यानी पानी पीने वास्ते तांबेड़ी
0: तांबेड़ी लाई यानी
1: हाँ
0: तो तांबेड़ी लाई तो तांबेड़ी उनका ही हो तांबेड़ो लावती कोई घड़ियो लावती भाई लाई दिखे मन अरे हूँ तो चरी भर मेल दू नी
1: हाँ?
0: तो चरी रो पानी पर हूँ कहीं है पतोलीम गाल दू
1: पतोलीम
0: हाँ भाई घड़ी घड़ी कौन करे चरी में पानी पड़ी रहे
1: हाँ?
0: पर मारू घड़ा घड़िया कोई क्या बाल्टिया ऊंचे को नी
1: हाँ?
0: हूँ मार कह चरी है जो पाची इन पतोलड़ी में गाल दू जो वो पानी डोडो ठंडो रह भूक रहे और तो बढ़िया काम करियो भाई ये
1: सुपारी दुकान में था सुपारी लाई मीठी मीठी
0: मीठी मारे हो पर को खानी भाई हूँ तो मारे
1: गोलियां लाई जन बह ले
0: हाँ बह दू तो गोल की तो ऊंच

0: सिबल देऊ
1: बाता
0: है भाई
1: हाँ?
0: क्या दूध बापा अंदोरी घड़ी मोटी करी मारो जीवड़ो जाने और हम हिलड़ी होना तो क्या नी कमल की में घाल
1: हाँ?
0: और हिलड़ी काल कठी तपती जोर आन पजो ऊपर दूध पावता करता जद जान है क्या नी थारे दिन उबा हुआ
1: जन नौबत है मार नाव क्या ने भूलो
0: अरे भूल जाऊ बात याद आवे जद है बात।

0: वाह भाई ये वाह निहाल कर दिया है बातें भली है के आज कह के संसार में दूध है जो को दूध रो दिन है
1: हाँ,
0: टाबरिया रे है जो कह नहीं हक कूदरा दिन है माँ बाप रो कह तुम्हें कह भाई कह कह थोड़ी घनी मान बोकरो कर बोकरो कहो करो तो हैंग बात भली हुई ओई दिन रो है तो मुबारकबाद है बधाई है और मैं भाई भगत बार हुनो कुण जिलमिया कुण फोत होया और है जो मारा कौत काम काज रिया हा जगह हुनो मन बताओ
1: आज दिन नवल बापा रे जन्म हुयो अशोक कुमार जी रो ए अपारे मेरठ उत्तर प्रदेश हुआ और ए अपारे नवल बापा कहनी हॉकी रा खिलाड़ी हा
0: ओ ठीक ठीक ठीक कहनी सुटी उदड़ी
1: हाँ और नवल बात है नी मेजर ध्यानचंद जी जानो नी
0: हाँ हुनी उड़ नाम है
1: बेड़ा है बेटा हा नवल
0: ओ हो ठीक ठीक
1: भाई हॉकी रा खिलाड़ी
0: हाँ हाँ भाई मैं दो तीन तुकमा लाया
1: हाँ
0: और मेजर ध्यानचंद तो कहनी बहादुरी ना खा
1: हाँ
0: और अंग्रेज कहनी के राजकर्ता गुलाम हो अपनो देश जद है जा मैं तो कह चुटिए दड़ी अड़ी सेवता जो कई बार मारी है जो कहनी बा चुटिए ने मैं है जो जांच करता
1: है नी
0: के आ छिपे की करे
1: हाँ।
0: बहुत खिलाड़ी कहनी भाई मैं थी तो
1: है नी नवल बापा रे 1975 में नी अपने विश्व कप जिताई हो तो और एन अपने अर्जुन पुरस्कार भी सम्मानित कर
0: वाह भाई वाह देखे बाप बेटा दो ही है जो कि एक खेल में इतो नाव करियो तो आज कोई कम बात को है नी कह नी के पिताजी तुकमा लाया अन बेटे ही दिलाया
1: हाँ।
0: तो भारत देश रो कह नी नाम ऊंचो यो तो आने कहो है जो कोटी कोटी नमन करा मंदड़ेरा फूल चढ़ावा पर बात है पर धोक देवा बड़े
1: बड़े नौलबा आज रे दिन अपारे जन्मदिन है कर्णम मलेश्वरी जी रो अपारे आंध्र प्रदेश है नौलबा और एनी एक महिला भारतोलक वेट लिफ्टर है अपारे 2000 में नी सिडनी में जी का ओलंपिक होया नी उनमें इन्हें कांस्य पदक जीतियो और एड़ो कर्णाली है नौलबा इन्हें पहली महिला है
0: ओ कर्णम मलेश्वरी
1: हाँ
0: मल मुतबल तो वह भाई कह देगा कि ताकत
1: हाँ।
0: और ताकत तू है जो कहूँ बहन समाते हो बू क्यों है जो ऊंचा करे बे हाँ भाई देखो लुगी जात हो ना देखे इतो नाव करियो नी आज कह बड़ा हुता हुता है जो कह के इतो भार ऊंचा होना वही एक खेल क्या भारी है जे पड़गो वे छाती जुट जा है कौन नहीं
1: करिए
0: करे ये उबा उबा करे तो गोडा मत जोर लगे कम कोई नहीं क्या झूलिया उतर जा
1: हाँ।
0: पर है जो जाप तो कर फेले करे तो आने बहुत बहुत मुबारकबाद है और भगवान हजरत जरा के चौका है तुकमा बड़े जीतता रहे बड़े
1: बड़े नौलबा आज
0: ए भाई शीला
1: हाँ
0: एक मिनट देखे हकरो दूध पीड़ो वह नी
1: हाँ।
0: तो फिर कह नहीं करार रहा है जो खेल वह
1: यू
0: हाँ हूँ ये गीत सुनो
1: हाँ
0: क्या भाई देखो हजर ताजा वह वह जिन पर मारी बात ही नहीं है हाँ। हुणो
1: हुणो नौलबा केसरिया।

0: धरती के लाल परदेसी साथ हिंदुस्तानी दो बूंद पानी आवारा मेरा नाम जोकर जड़ी के फिल्मा में काम करियो
1: हाँ।
0: और एन एनी नौलवा चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिया
1: मिलिया भाई मिलिया कहनी है तो एनी एनी फिल्मा बनान गया जो आज ही दे कहनी पुराने टाइम रा मिन्नत
0: हाँ।
1: तो बारो जीव हो रो है
0: और
1: कह दियो निक पाची आप री कह याददाश्त आ जा तो आनी हज को किदत रा गुल पेश करा कोटी कोटी नमन करा मंदिर रा फूल चढ़ावा और हम भाई शीला मने नी अर्जस यो हुना दे एक मीठो छोको तो मारी कह माला रो गिड़को हो रो है
0: नी हुना उन्ना उल्बा।

वाह भाई शीला, ए वाह निहाल, कर दिया महंग बात होगी। और आज हम दोहा ठीक है नी, ईद मास हा तो मैं साठ लाख गो और साडा नी हमें काली बोली आंदिया आई न बिजलिया खीवी न मेज बीजा होई और पचे देखे हुड़ हपाड़ रहा दिन है और थोड़ा बेगा जान कोई हुड़ हपाड़ कर लो, बाढ़ कांटो कर लो, तविया काट लो और नव तपो है तो देखो कर जंजर के जान काम कर लो ठाडी ठाडी टाइम में। और मैं देखो थोड़ो थाने में कहूँ है खपत करनी पड़ी।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत में आपको सुनाते हैं गोपी किशन फिल्म का गीत। कुमार सानू और पूर्णिमा की युगल आवाज़ें हैं। गीत समीर का, संगीत आनंद मिलिंद का है।

फिल्म संगीत में अब आपको सुनाते हैं दिल जले फिल्म का गीत, अजय देवगन और पूर्णिमा की आवाज़ें हैं। गीत हैं जावेद अख्तर का, संगीत अन्नू मलिक का।

आरजू झूठ है, कहानी है। आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

एक पल में जो आकर गुजरता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

आइए अब आपको सुनाते हैं क्रांतिवीर फिल्म का गीत अमित कुमार, सुदेश भोसले, पूर्णिमा और सपना मुखर्जी की आवाजें हैं। नगमा है समीर का, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: चल हट बाजू हट ना कर खट पट मत लपट झपट नट खट ना कर खट पट मत लपट झपट चल हट बाजू हट नट खट हट जा। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू
1: कभी 101 कभी 102
0: उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू
1: कभी 101 कभी

आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में अनोखा अंदाज फिल्म का गीत। समीर का है गीत और संगीत नदीम श्रवण का।

आइए अब सुनते हैं वसुंधरा दास की आवाज़ में जावेद अख्तर का रचा तराना, अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है मैं हूं ना।

ये है फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश। जुल्म फिल्म से ये गीत हैं, उदित नारायण की आवाज़ हैं, गीत हैं गुलशन बावरा का, संगीत दिलीप सेन, समीर सेन का।

8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत

0: दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
1: आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट,
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री मार्ल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालत

0: और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में

0: के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi Aung Lyan hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar Aung San Suu Kyi held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Mr. Misri said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
3: Both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy. Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work

पंकज उदास की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। दिलवाले कभी न हारे इस फिल्म का गीत आपको सुनाते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। संगीत है नदीम श्रवण का।

आइए अब सुनते हैं एक विवाह ऐसा भी फिल्म से गीत, शान की आवाज़ में। गीत और संगीत हैं रविंद्र जैन का।

आइए अब सुनते हैं मृत्यु दंड फिल्म का गीत। हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ों में, गीत हैं जावेद अख्तर का, संगीत आनंद मिलिंद का है।

यस बॉस, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वर हैं, गीत हैं जावेद अख्तर का, संगीत जतिन ललित का है।

मेहरबान फिल्म का ये गीत है फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश। अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाजें हैं। गीत रानी मलिक का, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का।

0: देंगे।
1: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर यहीं तक। छे आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर से अनुप्रसारित कार्यक्रम खेल जगत। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाएंगे कबड्डी खिलाड़ी कृष्णा वृद्धा से संजय दत्त की बातचीत। यह आकाशवाणी नागौर केंद्र का अंशदान है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम के साथ साथ ज्ञानवर्धक जानकारियां भी प्रदान करते हैं, और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको उन प्रतिभाओं से भी मुखातिब करवाएं जिन्होंने और न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। हम उन प्रतिभाओं को भी तराशते हैं जिन्होंने खेलों में भी अपना मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज हमने आपने आकाशवाणी के स्टूडियोज में आमंत्रित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्लेयर कृष्णा वृद्धा को। हम आपको बता दें, कृष्णा वृद्धा ने अक्टूबर 2025 में बहरीन में आयोजित एशियन यूथ गेम्स में इनकी पूरी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो आज बातचीत इनसे की जाएगी। सबसे पहले तो आकाशवाणी की स्टूडियोज में कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सर।
1: तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। जैसा कि आपको पता है कि नागौर जैसी ऐतिहासिक, जिसमें मीराबाई वीर तेजाजी जैसी पृष्ठभूमि रही है, तो उस जैसे शहर से और आपने इतने बड़े लेवल पर एक मुकाम हासिल किया और नागौर जिले का नाम रोशन किया, तो वो सफर कैसा रहा? आपने कहाँ से मतलब कबड्डी को एज ए खेल चुना और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे ये सफर रहा आपका?
2: मैंने पहले अपने गांव से स्टार्ट किया था खेलना, ऐसे पेरेंट्स का सपोर्ट और गांव में प्रैक्टिस की, उसके बाद यहाँ नागौर में प्रैक्टिस करने आई। अभी यहाँ पे मुझे 2 साल हो गए सोनजी सर के पास प्रैक्टिस करते हुए।
1: कृष्णा जी, हमें बताइए कि खेलों के प्रति आपका रुझान कैसे पैदा हुआ और कबड्डी को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि महिलाओं के लिए एथलेटिक्स एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: हमारे गांव में लगभग कबड्डी खेलते थे सभी, तो हमारे भैया वगैरह सब कबड्डी खेलते थे, तो हमने वहां से स्टार्ट किया।
1: तो कहने का मतलब यह है कि आपके घर में एक खेलों का वातावरण रहा और एक पृष्ठभूमि मतलब घर में ही तैयार हो गई थी कि खेलों में जाना ही है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व, जब आपने पहली बार भारत की जर्सी पहनी थी, तो वो लम्हा कैसा था, वो पल कैसा था, आपको कैसा महसूस हुआ?
2: हर एक खिलाड़ी का सपना होता है अपने देश के लिए खेलना, तो बहुत अच्छा लगा था उस वक्त।
1: और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, सबसे चुनौतीपूर्ण जो लम्हा आपका, जो कोई याद हो आपको, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जब खेल रहे थे, तो सबसे कठिन और विरोधी टीम कौन सी थी और आप लोगों ने, आपकी पूरी टीम ने किस तरीके से उस चुनौती को पार किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की समस्याएं आती हैं?
2: हम सबसे ईरान की टीम।
1: ईरान की टीम, तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी आप लोगों ने प्लान की थी कि उससे आप ओवरकम हो पाए?
2: हमारे कोच वगैरह ने हमें पहले ही बता दिया था उनके बारे में, तो सबने मिलके एक साथ की और वो हो गया।
1: अच्छा, हम देखते हैं कि कबड्डी जो है कि परंपरागत खेल है, भारत में बहुत पुराने समय से कबड्डी खेला जा रहा है। आज के दौर में हम बात करते हैं, तो आज आप क्या देखती है कि कबड्डी में कुछ बदलाव आपको नजर आता है? किन टेक्निक्स का विकास हुआ है, किस तरीके से मतलब कबड्डी डेवलप हुई है? क्योंकि पहली कबड्डी जो पहले हमारे परंपरागत पूर्वज लोग खेलते आ रहे थे, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कबड्डी है, क्या अंतर है?
2: अभी इस वक्त बहुत ज्यादा अंतर है। पहले ये गेम सिर्फ ताकत का था, इस वक्त ये गेम दिमाग और स्किल का भी है। इसमें ताकत की जरूरत होती है, पर स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: स्किल जी। अब हम बात करते हैं कि नागौर

0: आप नागौर से संबंध रखती हैं और नागौर से आपने ये सफर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक तय किया था। नागौर में अगर खेल सुविधाओं की हम बात करें तो क्या मतलब आपका डेली रूटीन रहता है, और नागौर जैसे जिले में खेलों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब किस तरीके का परिदृश्य है, क्या रुझान है लोगों का?
1: यहाँ पे हम स्टेडियम प्रैक्टिस करते हैं सर के पास, तो अच्छा सभी गेम्स हैं, बैडमिंटन है, जैसे कुश्ती है और ट्रैक वगैरह सबकी व्यवस्था है, हैंडबॉल का भी है, सब चीज़ों का है। तो अभी भी स्टेडियम में हो रहा है काम, बन रहा जिम वगैरह सब है। कबड्डी की तो सभी सुविधाएं हैं, सभी गेमों की सुविधाएं मिलेंगी आपको।
0: जी बहुत अच्छी बात है। देखो नागौर में रूढ़िवाद और अंधविश्वास भी काफी है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, तो आपको भी ऐसी कोई चुनौती का सामना करना पड़ा कि एकदम से ये खेलों में जा रहे हो आप?
1: नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक।
0: साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं खिलाड़ियों के लिए, प्रोत्साहन के लिए, कि उनको बहुत सारे संबल दिए जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक संबल है या फिर किसी भी प्रकार की सहायता दी जा रही है, तो उनको लेकर के आपका आपके क्या विचार है?
1: मैं अभी हमारे जैसे ये हुए थे तो उनके भी उनके लिए भी दिया गया था हमें, जैसे कि अमाउंट मिला तो वो आ गया अभी, तो इनका जैसे एशियन गेम थे ना उनका आ गया अभी, और सभी जैसे जूनियर वगैरह में मेडल वगैरह के फॉर्म भरे हैं तो वो अभी बाकी है।
0: कृष्णा जी एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि आपका डेली रूटीन है उसमें खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उनकी डाइट एक तो, और फिर उनकी लाइफस्टाइल और डेली रूटीन क्या है, वो बहुत मायने रखता है एक खिलाड़ी के लिए, क्योंकि इसमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ताकि वो आपका फ्लो बना रहे खेल के प्रति। तो उसके लिए आप कितना समय देती है और क्या आपका डेली रूटीन रहता है सुबह से लेकर के शाम तक की आपकी पूरी जो दिनचर्या का शेड्यूल है उसको बताएं?
1: सुबह हमारा ग्राउंड लगता है 5:30, 5:30 से हमारा 8:30 तक प्रैक्टिस होती है, जिम वही जाते हैं और ऐसे स्किल वगैरह भी करते हैं, और फिर दिन में रेस्ट, और शाम को लगता है हमारा ग्राउंड 5:30 से 7:30 के बाद ही ऑफ होता है।
0: तो इसमें आप किस तरीके से आप किस प्रकार की डाइट लेते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं वो थोड़ा बताएं?
1: जैसे जिम वगैरह करते हैं तो वहाँ पे तो हमारे वो ट्रेनर भैया सर हैं तो वो करवा देते हैं हमें जिम में सब, और जैसे हम खुद करते हैं तो सर हैं, सर करवाते हैं सोनजी सर, और डाइट वगैरह तो सब यही जो बिदाम वगैरह ये सब लेते हैं।
0: एक और चीज आती है कि आप युवा हैं अभी और साथ साथ खेलों के साथ साथ पढ़ाई का भी हमें एक बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत जरूरी है खेल के साथ साथ, तो इन दोनों चीजों में सामंजस्य कैसे बनाते हो, मतलब संतुलन कैसे? अभी फिलहाल आप क्या पढ़ाई कर रही हैं और खेल के साथ साथ आप पढ़ाई को कितना समय दे पाती है, क्योंकि आजकल युवाओं में इस सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर हम खेल पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, और पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है, तो इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे करते हो?
1: अभी तो मैं कॉलेज में हूँ सेकेंड ईयर, तो इतना टाइम तो नहीं मिलता, पर मिलता है तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं।
0: अच्छा जैसे कभी खिलाड़ियों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है कि खेल के दौरान उनको अक्सर चोट भी लग जाती है, तो इंजरी के दौरान किस प्रकार के चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर आप कैसे मतलब अपने आप को वापस खड़ा करते हो, कैसे मजबूत रहते हो, उसके लिए क्या तकनीक अपनाते हो?
1: हम फिजियो वगैरह ये करते हैं पहले, और फिर तो रेस्ट जैसे हो गया तो फिर अगर फिजियो से नहीं हुआ तो फिर तो डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, फिर अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर तो रेस्ट, फिर उसके बाद ही वापस करते हैं।
0: जी
1: रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन, इसका आपने नाम सुना होगा, अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसका क्या रोल है, मतलब कबड्डी की जो प्रतिभाएं हैं राजस्थान में उनको तरासने में राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन का कितना रोल रहा आपकी सफलता में?
1: राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि ये एक फेडरेशन है, फेडरेशन का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, तो वही सब करवाते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह, उनके हिसाब से सब होता है।
0: तो हाल ही में बहरीन में जो आयोजित हुई थी अंडर 18 एशियन यूथ गेम्स में आपकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो इसके अलावा आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पर और खेल चुकी हैं उसके बारे में भी बताएं?
1: मैं अंडर 18 से पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ, सबसे पहले सब जूनियर खेला था, उसके

0: बाद स्कूली 17 खेला जिसमें ब्रॉन्ज मेडल था, उसके बाद जूनियर खेला, उसके बाद फिर जूनियर खेला उसमें ब्रॉन्ज मेडल था, उसके बाद खेलो इंडिया, उसके बाद फिर जूनियर और अंडर 18 नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट और अंडर 18 इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट।
1: जी, तो मतलब आप कबड्डी से कब से जुड़े हैं वैसे?
0: मैं कबड्डी से यहाँ 2022 के बाद मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया था।
1: तो इन 4 सालों के अंदर ही आपने इतनी जल्दी दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता में शामिल हो गए, तो कैसे अपने को एकदम से तैयार कर लिया?
0: ऐसे मैं खेलती थी पहले, पर ऐसे कोई ऐसे नहीं था कि कबड्डी में ही जाना है
1: जी।
0: सब खेलते थे तो मैं भी खेल लेती थी, तो मेरे जैसे गांव में प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पे हमारे सर थे रतन जी सर, उन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई, फिर ऐसे जूनियर वगैरह खेल लिए थे पहले ही, फिर यहाँ पे आई तो उसके बाद सर के पास प्रैक्टिस की, अच्छी प्रैक्टिस हुई तो इंडिया खेल लिए।
1: तो एक आम जो युवा है, मतलब जो अभी पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो अगर वो खेलों में आना चाहता है तो उसको अचानक से अगर लग रहा है कि मुझे खेलों में जाना चाहिए, तो कैसे मतलब वो जुड़ेगा, उसके लिए क्या एक रोड मैप रहता है?
0: ऐसे अचानक से तो खेल में आना नहीं हो सकता, क्योंकि खेल उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, ऐसे डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है, तो अचानक से सब कुछ तो नहीं होता सर।
1: लेकिन शुरुआत मतलब कब उसको शुरू कर देना चाहिए कि हाँ इस ये मोमेंट है, या स्कूल में किस क्लास से या फिर किस एज ग्रुप
0: अगर ऐसे कोई बच्चा बचपन से खेल रहा है तो उसे तो स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर ऐसा है कि कोई बच्चा 11th 12th में स्टार्ट कर रहा है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं उस वक्त भी, जूनियर सब जूनियर स्कूली सभी में मिल जाना।
1: जी जी, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे नागौर के जो युवा हैं, महिलाएं हैं जो आपके इस इंटरव्यू को सुन रही हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि खेलों में मतलब क्या भविष्य देखती हैं आप, क्या एक संदेश रहेगा आपका ओवरऑल कि उनको जुड़ना चाहिए, और जुड़ना चाहिए तो किस प्रकार से उनको जुड़ना चाहिए?
0: अगर खेलों से जुड़ना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं खेलों से जुड़ने के लिए, कबड्डी में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी लीग वगैरह हो रहे हैं, सभी टूर्नामेंट्स भी आते हैं, तो अगर गेम से जुड़ना है तो बहुत हैं, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो भी यहाँ पे नागौर में तो अच्छी है, प्रैक्टिस होती है स्टेडियम में बड़ी।
1: तो श्रोताओं, आज हमारे बीच थी कृष्णा विरदा, आपने हाल ही में जो बहरीन में अंडर 18 एशियन यूथ गेम्स हुए थे उसमें भारतीय टीम को गोल्ड मेडल हासिल कराया था, आपने न केवल नागौर का बल्कि राजस्थान पूरे देश का नाम रोशन किया, आज आपने अमूल्य विचार हमारे आकाशवाणी की स्टूडियो में हमारे साथ साझा किए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कबड्डी खिलाड़ी कृष्णा वृद्धा से संजय दत्त की बातचीत, ये आकाशवाणी केंद्र नागौर का अंशदान था।

0: अब हम आपको सुनवाते हैं शतरंज खिलाड़ी आशी उपाध्याय से गोपाल लखन की बातचीत।
1: श्रोताओं, खेल जगत कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक नन्ही सी शतरंज खिलाड़ी जिसका नाम है आशी उपाध्याय। आशी, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में स्वागत है, वेलकम।
2: धन्यवाद।
1: आशी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इतनी छोटी हैं, शतरंज का शौक कैसे लग गया?
2: जब मैं 6 साल की थी तब एक दिन मेरी मम्मा मेरी बड़ी बहन को एक चैप्टर पढ़ा रही थी, नाम रोशन करने वाला बालक। वो विश्वनाथन आनंद सर पे था और उससे मुझे पता चला कि शतरंज भी कुछ होता है। उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे एक चेस बोर्ड ला के दिया, फिर जब मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा तब मम्मा ने एक एकेडमी ज्वाइन कराई थी।
1: फिर आपको समझ में आने लगा कि कैसे खेला जाता है?
2: हाँ जी, मेरी मम्मा ने मुझे सबसे पहले सिखाया था।
1: तो मम्मा आपकी पहली टीचर है?
2: हाँ जी।
1: मतलब जो आपकी गुरु है, कोच, जिन्होंने आपको शतरंज के प्रति इंस्पायर किया है, उसकी तरफ मोड़ा है। जब आपने पहला मैच खेला था आशी, और आप कह रही हैं कि 6 साल की थी तब से आपने शुरू किया था, तो पहला मैच शायद 6.5-7 साल की उम्र में खेला होगा
2: जी।
1: बताइए कैसा रहा अनुभव?
2: मुझे याद है कि मैं जब पहली बार एक स्टेट टूर्नामेंट था जो कि जयपुर में था वो मैं खेल रही थी, तब मैं बिल्कुल बिगनर थी और मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं आता था और मैं ऑब्वियसली हार गई थी, पर मुझे काफी अच्छा लगा था पहली बार खेल के और उसके बाद मैंने रेगुलर टूर्नामेंट्स खेले।
1: अच्छा, पहली बार जब मैच खेलने गई थी तो नर्वसनेस थी, जयपुर में हुआ था वो मैच?
2: हाँ जी, जयपुर में ही था और तब तो मैं बहुत ही छोटी थी।
1: कौन से मोहरों से खेलने का मौका मिला आपको?
2: ब्लैक।
1: ब्लैक, अच्छा।

0: अच्छा आशी, पहले मैच में हारने के बाद में फिर आपने देखा होगा कि काफी चैलेंज हैं इसमें, आपको किस तरह के चैलेंज लगते हैं शतरंज के खेल में?
1: आपको हमेशा अपने ओपोनेंट से ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है और ओपोनेंट के थ्रेट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, खुद भी अपने थ्रेट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप इतना अटेंटिव नहीं रहते हो तो हार सकते हैं।
0: हमने सुना है कि शतरंज को देखने के लिए ऑडियंस नहीं होती, जबकि और गेम्स में ऑडियंस होती है, काफी शोरगुल होता है और वो उससे हम प्रभावित भी होते हैं, हमारे गेम में कुछ अच्छा हो जाए जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, लेकिन चेस में ऐसा नहीं है। तो जो माहौल होता है बिल्कुल शांत पीसफुल होता है, पहला जो आपको कैसा लगता है बिना ऑडियंस के खेलना?
1: बिना ऑडियंस के खेलना थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि चेस में आपको सोचना पड़ता है, तो ऑडियंस से जनरली आप डिस्टर्ब होते हैं।
0: जब आपको बाहर जाना पड़ा टूर्नामेंट खेलने, मम्मा साथ गए थे, पापा कैसे सपोर्ट बोला
1: हमेशा
0: परिवार
1: मेरी
0: का?
1: मम्मा साथ गई हैं ज्यादातर, पापा भी कभी कभी कुछ टूर्नामेंट्स में मुझे लेके गए हैं, बट ज्यादातर मेरी मम्मा साथ जाती हैं। कभी कभी मेरी सिस्टर भी जाती है, या फिर उसे काफी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, घर पे रहना पड़ता है। और हमेशा मेरे कोच नितुल सर ने बहुत सपोर्ट किया, वो भी साथ में टूर्नामेंट्स जाते हैं।
0: चेस खेलने के लिए काफी सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ती है, अभ्यास बहुत करना पड़ता है, कोचिंग भी लेनी पड़ती है, ऐसे में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती?
1: जी होती है, मैं स्कूल तो इतना रेगुलरली नहीं जा पाती हूँ, बट आई ट्राई टू स्टे इन टच विद स्टडीज। मैं स्कूल के साथ साथ पढ़ाई करती हूँ, मैं स्कूल तो नहीं जा इतना जा पाती हूँ, बट घर पे पढ़ाई करती हूँ।
0: जैसे आपने बताया था शुरू में कि मम्मा एक किस्सा पढ़ा रही थी और जो नाम रोशन करने वाला बालक, और उसको सुनकर आपने चेस खेलने का निर्णय किया, तो मम्मा ने आपको ज्यादा सपोर्ट किया, पापा भी उतना ही सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए, या वो कहते हैं कि नहीं पहले एकेडमिक पढ़ाई पूरी कर लो?
1: नहीं, दोनों ही बिल्कुल सपोर्ट करते
0: दोनों
1: हैं।
0: सपोर्ट करते हैं। छोटे टूर्नामेंट से जब फिर बड़े टूर्नामेंट में गए आप, इंटरस्टेट अभी अभी आपने जीता है, कैसा रहा ये बड़ा मैच था और काफी सारा प्रेशर रहा होगा दिमाग पर?
1: हाँ जी, जब मैंने पहली बार नेशनल टूर्नामेंट खेला था तब तो मेरी कोई रैंक नहीं आई थी, बट जब मैंने सेकंड अपना नेशनल टूर्नामेंट खेला तब मैं 9 साल की थी, वो अंडर 9 नेशनल था, और तब मैं फोर्थ आई थी।
0: फिर फोर्थ आने पर आपको कुछ अच्छी
1: हाँ
0: फीलिंग
1: जी
0: आई?
1: बिल्कुल, उसमें क्योंकि काफी मुझे अच्छा उसके लिए
0: अच्छा, जब आपने मैच जीता फिर मम्मी पापा ने शाबाशी दी आपको,
1: हाँ जी
0: कुछ यूं लगा कि आज आशी ने बहुत बड़ा नाम किया है,
1: जी
0: क्या कहा?
1: जब मैं पहली बार स्टेट में मेडल लेकर आई थी, तब मैं अंडर 11 स्टेट में 2016 में सेकंड आई थी, और मेरा अखबार में पहली बार नाम आया था, तो मैं बहुत खुश हुई थी। तो मैंने मम्मा से कहा था कि देखो मैं भी नाम रोशन करने वाला बालक बन रही हूँ।
0: तो इस बात को लेकर मम्मा बहुत खुश हुई
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना? अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हमारा कोई रोल मॉडल होता है उस गेम से रिलेटेड, या कोई और भी हो सकता है, चेस को लेकर आपका कोई रोल मॉडल है कि आदर्श
1: हाँ
0: प्लेयर?
1: जी मैंने स्टार्ट भी विश्वनाथन आनंद सर को देख के किया, और वही मेरे रोल मॉडल हैं।
0: क्या खासियत है उनमें?
1: इंडिया के तो वो बेस्ट प्लेयर हैं ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और वो काफी अटैकिंग खेलते हैं, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ।
0: अच्छा, अटैकिंग खेलना भी एक आर्ट है इसमें शतरंज में, तो फिर डिफेंस भी होता होगा,
1: जी बिल्कुल होता है,
0: किस तरह से बचाते हैं अपने आप को?
1: ओपोनेंट की थ्रेट्स को रोकते हैं, उनको हम पे अटैक करने से रोकते हैं, और अपने थ्रेट्स लगाते हैं उन पे, काउंटर अटैक करते हैं।
0: सामने शतरंज की बिसात बिछी हुई है और सामने वाला खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है, ऐसे में उसके मन को पढ़ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये एक खिलाड़ी को आना चाहिए,
1: जी
0: किस तरह से पढ़ते हैं आप अपने विरोधी खिलाड़ी को?
1: जनरली ओपोनेंट की साइकोलॉजी उसकी मूव्स में दिख जाती है, क्योंकि मतलब अगर वो थोड़ा स्लो खेलता है या फिर थोड़ा अटैकिंग खेलता है, उससे पता चल जाता है कि वो डर रहा है, या फिर वो कैसे खेल रहा है, उसके क्या प्लान्स हैं, वो किस साइड अटैक करने की कोशिश कर रहा है।
0: तो ऐसा नहीं लगता कि शतरंज एक साइको गेम है, मनोवैज्ञानिक,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: काफी सारी चीजें आपको माइंड में ही चलती रहती है कि इस तरह से मुझे अपना गेम बचाना है और इस तरह से अटैक करना है?
1: हाँ जी जी बिल्कुल, हमेशा हर गेम से पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और हर गेम से पहले नहीं तो आपको एक जनरल अपनी जो सारी ओपनिंग्स वगैरह पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है।
0: आशी, आपके कोच आपको किस तरह सिखाते हैं?
1: मेरे कोच मुझे ओपनिंग्स वगैरह प्रिपेयर कराते हैं, कई बार गेम्स से पहले भी चेंज करनी पड़ती है ओपोनेंट को देख के। उसके अलावा मुझे जनरली वो मिडिल गेम, एंड गेम, इन सब के बारे में वो मुझे काफी प्रिपेयर कराते हैं।
0: कहते हैं कि एक स्टूडेंट मतलब एक खिलाड़ी में और उसके कोच में काफी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, और
1: जी
0: कोच कभी कभी नाराज होते हैं, तो फिर हम उनको किस तरह से रिएक्ट करते हैं? अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है आपको?
1: हाँ जी, कभी कभी सर डांट देते हैं तो मैं काफी डिस्टर्ब होती हूँ, बट इतना ऐसे कोई प्रॉब्लम
0: ऐसे में
1: नहीं
0: फिर
1: है।
0: मम्मी सपोर्ट करती?

0: पापा या कोच सर खुद ही आपको सपोर्ट करते हैं?
1: डिपेंड्स ऑन, कभी कभी मम्मा जनरली सर का ही सपोर्ट करती है कि अगर सर डांट रहे हैं तो सही है।
0: क्योंकि कोच आपकी बेहतरी के लिए
1: हाँ
0: है।
1: जी।
0: अच्छा, जब हम चूंकि अभी मैच खेल रहे हैं और अभी हमारी उम्र भी काफी छोटी है, तो हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं कि मुझे चेस में ही आगे अपना करियर बनाना है या मैं एकेडमिक कुछ अच्छा अचीव करके और किसी सर्विस में जाऊंगी। कुछ प्लान कर रखा है आपने? इसमें भी आपके मम्मी पापा कुछ हेल्प करते होंगे?
1: अभी तो मेरा चेस का ही है। मैं जब तक मेरा चेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं चेस को ही ज्यादा प्रायोरिटाइज करूंगी।
0: जब हार जाती हैं तो किस तरह रिएक्ट करती हैं?
1: अगर मैं कोई ऐसा लगता है मुझे मैंने अपना बेस्ट नहीं खेला तो मैं अपने आप से नाराज होती हूँ। और उसके अलावा वैसे अगर ओपोनेंट ज्यादा अच्छा खेल रहा है मुझसे तो फिर यही है कि मैंने इतना अच्छा नहीं खेला।
0: कभी ऐसा हुआ एक आशी के आप जीत रही थी और जीतते जीतते हार गई?
1: हाँ जी, ऐसा बहुत बार होता है।
0: ये कैसे होता है? गलतियां करते हैं खिलाड़ी या कुछ और कारण होता है?
1: कई बार होता है कि आप जीत रहे हो, जीतते जीतते आपसे एक मिस्टेक हो गई। चेस में आप लास्ट में भी कोई भी मिस्टेक कर दो तो कभी भी हार सकते हैं। लास्ट मोमेंट तक कुछ डिसाइडेड नहीं होता, गेम किसी भी साइड जा सकता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप हारते गेम भी जीत जाओ या जीतते गेम भी हार जाओ।
0: हर एक माता पिता चाहते हैं कि जब भी हमारे बच्चे खेलने के लिए जाएं किसी टूर्नामेंट में तो हमेशा जीत कर आएं। कोच का भी थोड़ा प्रेशर रहता है कि मेरा स्टूडेंट बेस्ट करे। जब आप खेलने जाती हैं तो प्रेशर में रहती हैं कि नहीं मुझे जीतना ही है और अपने मम्मी पापा या अपने कोच के जो उम्मीद है उन पर खरा उतरना है, ऐसा कुछ प्रेशर रहता है?
1: कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ कि जीतना तो है, वो तो है ही, बट ज्यादा इम्पोर्टेंट यही कि आप अपना अच्छा गेम खेलो। सर जो है वो मेरे, वो तो इसमें ज्यादा फोकस करते हैं कि मैं गेम कैसा खेल रही हूँ, और रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है ही।
0: शतरंज के गेम में चूंकि प्रेशर बहुत रहता है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या आप कोई योगा या कोई मेडिटेशन इस तरह की कुछ एक्टिविटीज करती हैं?
1: नहीं, मैं ऐसे तो कुछ नहीं करती हूँ।
0: अच्छा, मम्मी और पापा के साथ में खुश रहती हैं, है
1: हाँ
0: ना?
1: जी।
0: और शतरंज में अभ्यास करके ही आप अपने आप को टेंशन फ्री कर लेती हैं, ऐसा?
1: हाँ जी।
0: चूंकि अभी तो आप खुद काफी छोटी हैं, फिर भी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपकी उम्र के जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगी आप?
1: हर बच्चे में अपना अपना एक टैलेंट होता है, तो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में, तो कोई और भी फील्ड चूज कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही जाएं या किसी और पर्टिकुलर फील्ड में ही जाएं। अपनी पसंद की कोई भी फील्ड चुन सकते हैं।
0: अपने खेल में और अपने पढ़ाई में किस तरह बैलेंस करती हैं?
1: मेरी पढ़ाई में बैलेंस करने के लिए मेरी मम्मा और ट्यूशन टीचर्स मेरी हेल्प करते हैं, और स्कूल भी काफी सपोर्टिव है। स्कूल के टीचर्स भी मुझे बताते थे हैं कि ये पीछे से पढ़ाई में हुआ है, ये सब कवर करना है।
0: चलिए आशी, हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप शतरंज में बड़ा नाम बने इंडिया का और पूरे देश में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और वो जो आपने कहानी पढ़ी थी विश्वनाथन आनंद की, नाम रोशन करने वाला बालक, उसी की तरह आशी उपाध्याय भी शतरंज की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बने, नाम कमाए।
1: थैंक
0: आज आप
1: यू।
0: आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शतरंज खिलाड़ी आशी उपाध्याय से गोपाल लखन की बातचीत। श्रोताओं, अब समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
1: आप सुन रहे थे खेल जगत आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्यनगरी चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

लीजिए आप सुनिए पहली फिल्म का गीत। हेमलता और सुरेश वाटिकर की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

आइए अब सुनते हैं जूली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज है। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन।

आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले के युगल स्वरों में गुमराह फिल्म का गीत, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत रवि का।

लीजिए, अब सुनिए कैफ भोपाली की रचना, खयाम के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज़ है। फिल्म का नाम है शंकर हुसैन।

0: आइए अब सुनते हैं काला बाजार फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत रचना है शैलेंद्र की, संगीत एस डी बर्मन का है।
1: खोया खोया चांद खुला आसमान।

फिल्म संगीत के आखिर में आपको सुनाते हैं वर्मा मलिक का रचा तराना। चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार की आवाज़ है। फिल्म का नाम है इंतजार।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया।

0: दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां

0: सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said, both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards the completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project. President Draupadi Murmu has said, Myanmar is an important partner in India's Neighbourhood First Act East and Mahasagar policies. Welcoming Myanmar President U Min Aung Hlaing at Rashtrapati Bhavan today, President Murmu said, both the countries share deep cultural, civilizational and spiritual ties that go back to centuries. The President said, Myanmar is India's gateway to Southeast Asia, as it is the only ASEAN country that shares a land border with India. Congratulating President Hlaing on assuming office as the President of Myanmar, President Murmu said that India looks forward to working closely with the new government to strengthen the bilateral partnership further. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CPAL will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that this partnership agreement is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust. The Union Minister informed that from day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's export to Oman. Mr. Goyal informed that multiple consignments are being shipped today from Mumbai, Kolkata and Chennai to mark the operationalization of the agreement. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by Mr. Goyal on the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement. The Prime Minister said the article emphasizes that the government's efforts to sign trade agreements with developed countries help improve the lives of every Indian. India and Australia today affirmed the importance of enhancing cooperation with regional partners to help maintain a free, open, peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific. During the second edition of India-Australia Defence Ministers' Dialogue in New Delhi, both

श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं। वहां केवट से गंगा को पार कराने के लिए अनुनय करते हैं। विस्मित नयनों से केवट श्री राम को निहारते हुए विनती करते हैं, प्रभु तुम तो जग के खेवनहार हो, तुम्हें कौन पार लगाए।